हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026 सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर पर। आइए सुने भक्ति संगीत वंदना।

एक समय सब देवों ने शंकर से पूछा, हे त्रिपुरारी, हम सब में है कौन देवता पहली पूजा का अधिकारी। कुछ सोचा फिर शिवजी बोले, प्रथम पूज्य वह हो जाएगा पूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर जो सबसे पहले आएगा।

एक लहर गायब होने से डरती है, पर एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। लहर ने सोचा कि वो खत्म हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए खो जाएगी। पर जब उसने खुद से पूछा, मैं क्या हूँ, तब महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक लहर नहीं थी, वो हमेशा से समुद्र से थी। हमारी तरह हमें लगता है कि हम छोटे हैं, अस्थाई हैं, लेकिन हम तो वास्तव में स्वयं अनंत जागरूकता हैं।

रोज एक अच्छा काम करना और इसे भूल जाना, न जाने कैसे पर यह लौट के वापस आता है जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। न जाने कैसे तो एक अच्छा काम करना हमेशा के लिए आदत।

सुबह की इस बेला में अब 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान किसी भी एक चीज़ पर केंद्रित करें। पानी की बूंद, हरा पत्ता या फिर आसमान से गुजरता छोटा सा बादल का टुकड़ा। आश्चर्य है ना कि हमें खुशी पाने के लिए या ढूंढने के लिए बाहर कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

बहते पानी की तरह हर एहसास और हालात जीवन का एक हिस्सा है, इतना समझ जाना ही हमें सुकून से भर देता है। वंदना का आज का अंक पूरा होता है।

अब से कुछ ही पलों में सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती में आज सुनिए 6:50 पर, 7 बजे का समय रहेगा सदाबहार नगमों का। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइए 7:45 पर और 8:30 बजे नमस्कार उदयपुर।

नमस्कार। उदयपुर में आज है कल्चर पॉप सैटरडे। इसमें सबसे पहले वीकेंड की शुरुआत होगी लोकल अपडेट्स के साथ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर जानकारी होगी और बात होगी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर। सेकंड सेगमेंट फोक एंड रूट्स में मेवाड़ में महाराणा प्रताप से जुड़े स्थान और स्मारक पर बातचीत करेंगे। एंटरटेनमेंट एजुकेशन लॉन्च होगा और इसमें आप जानेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफ़र के बारे में। आज बात करेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो अब हम सुनते आए हैं आकाशवाणी से, उनके बारे में। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बातचीत होगी सड़क सुरक्षा और सुरक्षित जीवन पर। प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर में। सुबह की सभा में 9:30 बजे सुगम संगीत सुनवाएंगे और शीर्षक गीतों का कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे।

सहेलियारी बाड़ी कार्यक्रम सुनना ना भूलें दोपहर 1:05 पर, जिसमें आज विचारवारी बात होगी महिला नेतृत्व क्षमता से ग्रामीण विकास विषय पर। सभ्यता के तहत जानिए ई गवर्नेंस सेवाएं, सभ्यता संस्कृति सेगमेंट में होंगी ई गवर्नेंस सेवाओं पर जानकारी, राजस्थानी गीतों का लुत्फ भी आप उठा सकेंगे और जानकारी होगी डे केयर सेंटर योजना के बारे में। गाँव में आजकल सेक्शन में आप सुनेंगे पंचायत कार्यों में सहभागिता और राजस्थानी लोकगीतों के साथ साथ अगला हमारा टॉपिक होगा पर्यटन स्थल पंचमणी।

0: ढाई बजे आप सुनेंगे कृषि जगत, इसमें बातचीत होगी पशु शेड का वैज्ञानिक निर्माण और जानकारी होगी ताप नियंत्रण तकनीक के बारे में। इसी के साथ युवाणी में आज क्या है खास ये भी जान लीजिए। शाम 5 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शहर की बात, मनीष सिंह का इंटरव्यू और आज विषय हो शहर की बात में आपको जानकारी मिलेगी कोहिमा, दीमापुर और लॉन्गलेंग के बारे में। और टैनिथ आदित्य और रेमस जोन्स इनके बारे में जानकारी दी जाएगी आज का युवा सेगमेंट में। और मेगा प्रोजेक्ट्स में आप जानेंगे NEOM के बारे में। तलत महमूद, ग्लेन जैक्सन, विजय देवरकोंडा, साई पल्लवी और तिंगला तोरोपे, दनीत सिल्वास, ग्रांट हैकेन, यानी कि आज के दिन से जुड़ी हुई सारी सेलिब्रिटीज़, इंडियन सेलिब्रिटीज़ खासकर, इन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी आपको युवाणी प्रोग्राम में। और साथ साथ इतिहास के बारे में, जो आज के इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आप जान पाएंगे। रोज़गार समाचार भी सुनिएगा और खेल समाचार भी आपको सुनवाएंगे युवाणी प्रोग्राम में। दिन भर विविध कार्यक्रमों से भरपूर रहेंगे तो आप सुनेंगे बहुत सारी जानकारियाँ, गाने और उसी के साथ साथ अब वक्त हो रहा है रामचरितमानस गान का। तो आइए सुने सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरितमानस गान।
1: 73

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब सुने खेती में आज, सुनिए मई माह के कृषि कार्य।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगला ही किसान भाई बहना ने नानू भाई रो घणो घणो राम राम सा। देखो सा किसान भाई, आज राणे कार्यक्रम में आप बात करा कि रवि फसलारी कटाई मड़ाई गहाई रो काम आने टाइम पूरा भई चुके है और अना फसला ने सुरक्षित भंडारण करनो भी किसान भाई बहना रे बात है जरूरी है। अनाज रे लार लारे भूसो भी एक बहुमूल्य उत्पाद है तो अंडो भी भंडारण जो है देखो सावधानी पूर्वक कीधो जानो चावे। रवि फसला रे उत्पादन में वैज्ञानिक तरीका ने सुरक्षित रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अने टाइम पे किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने मिट्टी ने भी देखो सुरक्षित बनाई सके। जटे देखो आप बात करा गेहूँ और जोरी फसल में कटाई उपरांत प्रबंधन रे तो आप सब जाना कि अधिकांश किसान भाई बहन जो है गेहूँ री कटाई जो है दराती करे हो जंडे कारण देखो 3-6 सेंटीमीटर ऊपर तक कटाई की दी जावे। कटाई रे

जो टेम वे वन में देखो फसल उत्पादन रो प्रमुख कारण है। और किसान भाई कटिया लगा गेहूं रा पौधा रा छोटा छोटा बंडल में बांध दे, खेत में 2-3 दिन तक हो गए देखो छोड़ देता है, और अंडे केड़े मशीन या बचे कंबाइन द्वारा देखो आप कटाई करा तो नमी वाला दाणा ने सुखावारो देखो टेम नहीं मिले। कटाई रे केड़े यो एक महत्वपूर्ण टेम है, जेने टेम आपा परिपक्वता अवधि ने ध्यान में रखता लगा आपने दाणा ने जो देखो झड़वा और गिरवा बचाई सका। हाँ किसान भाई बहना ने चाहे कि जो फसला पाक गए मना रहे देखो जो आपा फसला ने सीधा धूप में हुकाऊँ देखो वचा दाणा ने साफ बोरी में देखो अपने भरनो चाहे और अणु भंडारण करवाऊँ देखो आपने जो है गेहूं री फसल री सुरक्षा वे। कटाई रे उपरांत दाणा ने तुरंत सुखाणो एक शुष्कता उचित मड़ई निड़ई साफ सफाई साफ बोरिया रो उपयोग और वैज्ञानिक तरीकों नमी और कीट प्रबंधन अगर आपा राखांगा और समुचित हवा प्रबंधन रे लार लारे अगर अणा सब स्तर ने अपने ही ने आपा अगर गेहूं और जोरी फसल रो प्रबंधन करांगा तो बाजार में आपने अच्छो लाभ मिलेगा। जटे देखो वैज्ञानिक तरीकों बीज भंडारण करवाऊँ देखो कीट और रोगा रो प्रकोप कम वे, जणो बीज लांबा टाइम तक स्वच्छ और सुरक्षित रहे है। बीज ने भंडारण पहला ठीक प्रकार सुखाई लेनो चाहे और भंडारण रे केड़े विभिन्न प्रकारों अगर कीट प्रकोप दिखाई दे तो वन में नमी री अधिकताओं देखो कीट प्रकोप बढ़ जावे है। तो भंडारण रे टाइम धान्य वाली जो फसला है वन में नमी री मात्रा 8-10% और दलहनी और तिलहनी फसला में 6-8% तक नमी वेवा में वनारो भंडारण करनो चाहे। भंडारण रे टाइम पे धान्य वाली जो फसला है वना में बीज 10-12% अधिक नमी वेवा पर कीट मकोड़ा रो प्रकोप ज्यादा वे और 14-15% अधिक अगर वन में नमी है तो फफूंदी जनित रोग और 15% अधिक नमी वेवा पे अच्छी तरह अंकुरण नहीं वे पावे है। तो किसान भाई बहना आपने चाहे कि सबसे पहला भंडार गृह वाली जगह ने आप अच्छी तरह साफ सफाई कर ला, पुराना अवशेष मकड़ी रा जाला जो है वना ने निकाल ने साफ कर देना है, दीवारा या पचे फर्श पर पड़ी दरारा ने सीमेंट बंद कर देनो है और कीटारे बचाव रे वाते मेलाथियान 50 EC मात्रा जो है 100 लीटर पानी में गोल वणे ने भंडार घर में अच्छी तरह छिड़काव करनो है। अन्य कमरा में कम 1 सप्ताह तक बंद राखवा पर अन्न में छिपा लगा जो कीड़ा मकोड़ा है वे मर जाएगा और कीटारो छिड़काव नियंत्रण नहीं की दो तो 2 कीट प्रति किलोग्राम बीज या अनाज की उपस्थिति में धुआं देवा वाला विषैला जो रसायन है वणु भी कीट मर जावे है। अणि धुआं में विषैली गैस निकले, एल्यूमिनियम फास्फेट की 2 गोली प्रति टनरी दर विभिन्न ऊंचाई पर आपने रख देनी है और छल्ली में गैस अवरोधी चादर ढक देनो है। गोलियां ने हवारी नमी शोषित वे और फास्फिन जो गैस है वह निकले है जा कीटा ने मार देवे है। मिथाइल ब्रोमाइड रो उपयोग करने पर ढेर में 3-5 मिलीलीटर मिथाइल ब्रोमाइड प्रति 100 किलोग्राम अनाज रखवा रहे लारे बर्तन बंद कर दा और बर्तन में गैस निकलवाऊँ कही वेगा कि जो कीट मकोड़ा है वे मर जाएगा और अनाज ने नीम रा बीज रे पाउडर रे लारे मिलाई ने भी रखा तो कीट रो प्रकोप नहीं बे है। गोदाम में बीज भंडारण रे वाते हमेशा एक लकड़ी रो प्लेटफॉर्म बनानो जो करीब 1 फुट ऊंचा फर्श पे वे, दीवारों लगभग 1 फुट री दूरी पे वे और बोरा ने गोदाम री दीवार ने सटाई ने कदी नहीं रखनो चाहे। भंडारण प्राय जूट रा बोरा में करनो चाहे और नई बोरिया रो उपयोग करनो है ज्यादा अच्छो रेवे। पुरानी बोरिया वेवा पे वना ने अच्छी तरह सुखाई ने 3-4 दिन तक तेज धूप में सुखाई देनो है और पुरानी बोरिया रो उपयोग में लेवाऊ पेला वना ने गर्म पानी धोई ने 0.1% मेलाथियन गोल में 15-20 मिनट तक दुबन राखनो है पछे वना ने अच्छी तरह सुखाई ने उपयोग में लेनो चाहे। अबे देखो अबाणु आने टाइम पे आपा मूंगफली री फसल में सस्य प्रबंधन रे अगर आपा बात करा तो सिंचित क्षेत्र में जायद मूंगफली री बुवाई जो है मई रे पहला सप्ताह में कर सका। हाँ अंडे बातें मूंगफली गेहूं फसल चक्र अपनाए जानो चाहे परंतु एक ही भूमि में हर वर्ष अगर मूंगफली उगावांगा तो अणु भूमि में कई रोग पैदा हो जाएगा। जायद मूंगफली री उन्नत किस्म M522 M335 HB84 और सिंचित क्षेत्र में M3712 ने क्षेत्र में जटे वर्का अच्छी वे वटे लगाई जा सके। जटे उर्वरक रे प्रयोग री अगर आप बात करा तो मिट्टी परीक्षण रे आधार पर देखो उर्वरक रो प्रयोग करनो लाभदायक रहे। अधिक उत्पादन लेवा रे वाते सिंचित क्षेत्र में उर्वरक रो प्रयोग 2530 किलोग्राम नाइट्रोजन 5060 किलोग्राम फास्फोरस और 4000 किलोग्राम पोटाश यदि बारहने क्षेत्र में है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20-30 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति हेक्टर जो है मात्रा किसान भाई डाल सके है।
अधिक उपज लेवा रे बात है वावणी रे टाइम पे 250 किलोग्राम प्रति हेक्टरी दरों जिप्सम रो प्रयोग।

भी किसान भाई कर सके है। यदि कह रहे कारण हूँ, देखो बुवाई टाइम जिप्सम ने अगर आप मिट्टी में नहीं मिलायो है तो फसल यदि 40 से 45 दिन रही वही जाए वही टाइम पौधा रे जड़ा में देखो अन्य आप डाल सका हाँ। मिट्टी में वावने रे पहला 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर या पचे जैविक खाद रे रूप में भी आप उपयोग में ले सका हाँ। यदि खड़ी फसल में जिंक रे कमी रे लक्षण दिखाई दे तो 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% बुजा लगो चूनो जो है वरने 200 लीटर पानी में अपने गोल बनाई ने पर्णीय छिड़काव रो उपयोग कर सका हाँ। लोहारी कमी वाला क्षेत्र में फसल में जिस तरह कमी लक्षण दिखाई दे तो 1% फेरस सल्फेट जो है वनडो पर्णीय छिड़काव करना है और बोरान री कमी वाला भूमि में बोरेक्स 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या जिप्सम रे लारे खड़ी फसल में 40 से 45 दिन रे अवस्था में आपा दे सका हाँ। मूंगफली री फसल में खरपतवार द्वारा लगभग 40 से 45% तक जो उपज वे वन में कमी आवे। मूंगफली री फसल शुरुआती 30 से 35 दिन रे अवस्था में खरपतवार रे वाते संवेदनशील वे खरपतवार निकालवार वाते 3 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई करनो लाभदायक रहे। अणमें पहली निराई गुड़ाई वावणी रे 20 से 25 दिन बाद, दूसरी निराई गुड़ाई वावणी रे 35 से 40 दिन बाद करनी चावे। मूंगफली री फसल में खरपतवार नियंत्रण रे वाते बासालिन या ट्रेफलोन री 0.75 या पचे 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व री मात्रा वावणी पहला मिट्टी में मिलाई देनी है और वावणी रे केड़े खरपतवार रो प्रयोग नी कीधो गयो है तो वावणी 1 से 3 दिन रे अंदर लासोरी 1.5 या पचे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पेंडी मिथेलिन री 1 या 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व री मात्रा ने छिड़काव द्वारा अच्छी तरह मिट्टी में मिलाई देनो है और खड़ी फसल में चौड़ी पत्ती या पचे घास वाला खरपतवार नियंत्रण रवाते इमेज या थाई पर जो है 75 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्वरी मात्रा वावणी रे 20 से 25 दना पर छिड़काव करनो है। वावणी रे बाद 15 से 20 दन रे अंतराल पर सिंचाई करते रहनो और सिंचाई करती बेरा आनी बात रो ध्यान रखनो है कि खेत में पानी जमा नहीं वेणो चावे। जना खेता में पानी भराव रे समस्या वे तो वटे जल निकासी री उचित व्यवस्था वेणी चावे। चेपा जो कि पौधा में रस चूसे वंडो प्रकोप ने नियंत्रण करवा रहे वाते 200 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी जो है 200 लीटर पानी में मिले ने फसल पर छिड़काव करना है। अणि रोगरी रोकथाम रवाते फफूंदी नाशक जिस तरह बावेस्टिन या थिरम नामक दवा जो है वणु बीजोपचार करने अगर आप वावणी करेंगा तो वो भी एक अंडो अच्छा उपचार है। तो देखो किसान भाई आज रे कार्यक्रम में यही जानकारी और देखो कार्यक्रम में घड़ी आड़ी देखा तो आपने चालवारो टेम वेरो तो आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।

आपने सुना खेती में आज, प्रस्तुतकर्ता नारायण लाल आमीठा। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर का गाया ये गाना हमने लिया था फिल्म हीरो से। सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। नमस्कार, उदयपुर सुनिए हर रोज सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी दोनों पर। आज कल्चर पॉप सैटरडे वीकेंड ओपनर में जानिए लोकल अपडेट्स, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर जानकारी। फोक्स एंड रूट सेगमेंट में बात करेंगे मेवाड़ में महाराणा प्रताप से जुड़े स्थान और स्मारकों के बारे में। एजुकेशन लाउंज, जानिए आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर के बारे में और जानकारी होगी सड़क सुरक्षा और सुरक्षित जीवन पर। तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी उदयपुर और रेडियो लेक सिटी दोनों पर एक साथ।

लता मंगेशकर, नितिन मुकेश का गाया ये गाना आप सुन रहे थे नूरी फिल्म से। अगला गाना यशोदास की आवाज़ है, नैया है फिल्म का नाम।

0: सके रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही।
1: 1975 रिलीज फिल्म मौसम का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज़ों में। आइए अब हेमलता की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

आकाशवाणी उदयपुर से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना हमने लिया है फिल्म खट्टा मीठा से, आवाज़ें लता मंगेशकर किशोर कुमार की।

इस सरल से सुरीली से गाने के बाद बढ़ते हैं आखिरी नगमे की ओर। सदाबहार नगमों के इस सेगमेंट में आखिर में सुनवा रहे हैं दो जासूस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सुनते हैं आबोहवा।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं, और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं, और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: आबोहवा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए सुने समाचार प्रभात और 8:15 मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
5: और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
6: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है, और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता।

0: आकाशवाणी न्यूज कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की

0: दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी,

0: नए अध्याय की शुरुआत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बीता पल पीछे छूट जाता है और नया सवेरा जिंदगी बना जाता है। तो अपने आज को भरपूर जी ले आकाशवाणी उदयपुर के साथ, और आज के नमस्कार उदयपुर में हाजिर है हम लेकर आज का अंक। और आज के अंक में मैं हूँ मीनाक्षी और मेरे साथ है
1: ज्योति।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन।
1: नमस्कार।
0: और ज्योति, आज है शनिवार का दिन यानी कल्चर पॉप सैटरडे, तो क्या क्या खास रहेंगे हमारे आज के कार्यक्रम?
1: सबसे पहले वीकेंड ओपनर में हम लोकल अपडेट्स देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में जानकारी देंगे और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर पक्षियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी लेंगे हमारे खास मेहमान से। पोक एंड रूट सेगमेंट होगा नेक्स्ट हमारा, और उसमें हम बात करेंगे मेवाड़ में महाराणा प्रताप से जुड़े स्थान और स्मारकों के बारे में।
0: बिल्कुल। और शैक्षणिक जानकारी होगी, आकाशवाणी के 90 वर्षों का सुनहरा सफर तय करेंगे, मनोरंजन और आकाशवाणी के साथ की बातें होंगी, अवेयरनेस में सड़क सुरक्षा और सुरक्षित जीवन की बात होगी क्योंकि यूएन ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है।
1: तो चलिए सफर पर चलें।
0: चलते हैं।

0: मॉर्निंग अपडेट्स के साथ हम तैयार हैं और अब बात करेंगे जलापूर्ति के बारे में। तो तकनीकी खराबी के कारण जलदाय विभाग के नगर सप्तम उपखंड सप्तम में आज प्रतापनगर टंकी से होने वाली सप्लाई एक दिन आगे बढ़ाई गई है। बेड़वास, एनबी नगर, जज कॉलोनी, एफ ब्लॉक, ई क्लास और इन इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सप्लाई जो है वो आज ना होकर रविवार को होगी।
1: बिल्कुल। और अगली खबर महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय की है कि इन दिनों गर्मी, लू, तापघात के मरीज बढ़ रहे हैं ज्योति, जिसे देखते हुए 11 मई यानी सोमवार से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक न्यू ओपीडी भवन में सायकालीन ओपीडी शुरू की जाएगी। मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक यूनिट हेड जो होंगे और उनके साथ कई डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे इनमें।
0: और बिजली आपूर्ति के लिए भी, जानकारी के लिए भी आप तैयार हो जाइए कि आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कई जगह पर विद्युत आपूर्ति भंग रहने वाली है। मीनाक्षी, ये क्षेत्र हम बताते हैं बंजारा बस्ती सैटेलाइट फीडर से संबंधित क्षेत्र। इसमें है वीणा नगर, बप्पा रावल नगर, पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, प्रताप नगर, सेक्टर 6, सब्जी मंडी रोड, सैटेलाइट हॉस्पिटल, झामर कोटरा रोड, शिव कॉलोनी, सेक्टर 6, थाना हिरणमगरी, मंडी थाना, शिव कॉलोनी, सेक्टर 6।

0: जामर कोटड़ा रोड, जड़ाव नर्सरी, बंजारा बस्ती, साईं बाबा मंदिर और इसके अलावा शांति नगर, गायत्री नगर, सेटेलाइट अस्पताल, चाणक्यपुरी, पूजा नगर, सेक्टर 4-5 और 120 फिट रोड जो है, BSNL कॉलोनी, काशीपुरी, आदर्श नगर, न्यू विद्या नगर और इसके आसपास के सारे एरियाज में आज विद्युत आपूर्ति भंग रहेगी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
1: काफ़ी एरियाज में। और अगली खबर है उत्तर पश्चिम भारतीय रेल की कि जयपुर रेवाड़ी रेलखंड के में निर्माण और मरम्मत का कार्य चल रहा है जिस कारण चंडीगढ़ उदयपुर ट्रेन के मार्ग को थोड़ा बदला गया है। 10 मई को यह ट्रेन रेवाड़ी अलवर जयपुर फुलेरा की जगह रेवाड़ी रिंगस फुलेरा होकर उदयपुर आएगी और यही रूट इसका जाने का रहेगा।
0: बिल्कुल, तो ये लोकल अपडेट्स के बाद आज दिन विशेष की अगर बात करें तो आज है 9 मई और आज का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि साहित्य और कला की वो विरासत लेकर आया है जिसने पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया।
1: बिल्कुल, आज ख्यातनाम बंगला कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। एशिया में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति और जिनका बचपन का नाम रहा रवि, 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता की रचना की और 16 वर्ष में कहानियां और नाटक लिखने उन्होंने शुरू कर दिए।
0: हमारे राष्ट्रगान में, हमारी सोच में, हमारी कला में, हमारी शिक्षा में उन्होंने हमें ऐसी विरासत दी जो कभी पुरानी नहीं होगी। उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। रविंद्र संगीत से सजा ये गाना हम सुनवाएं,
1: सुनते हैं।

0: तो IPL अपडेट क्या है मीनाक्षी आज की?
1: बिल्कुल ज्योति, कल IPL 19 का 51वां मुकाबला खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को उसके होम ग्राउंड पर ही 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और दिल्ली ने 143 रन का लक्ष्य दिया, जिसे कोलकाता के ने 14.2 ओवर में ही पूरा कर लिया और मैच जीत लिया। फिन एलन को ने जो उन्होंने महज 47 बॉल में सेंचुरी बना ली थी, नाबाद भी रहे और उनको अपने शानदार प्रदर्शन के कारण मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। और जहां मैन ऑफ द मैच एलन की बात कहें ना, उन्होंने 5 चौके और 10 छक्के लगाए, एक मतलब शानदार धुआंधार पारी खेली थी।
0: तो मैच रोमांचक रह रहे हैं और ऐसा ही रोमांचक रहने वाला है आज का मुकाबला भी, जो जयपुर में होगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। राजस्थान रॉयल्स हैं और एक तरफ हैं गुजरात के टाइटंस। राजस्थान रॉयल्स अपने घर में खेल रहे हैं तो गुजरात के टाइटंस किसी भी समय बाजी पलट सकते हैं, ना मीनाक्षी?
1: बिल्कुल। और कल के मैच में की एक और अंक तालिका की भी बात बता देते हैं। तो अंक तालिका में कोलकाता अब 7वें स्थान पर है और दिल्ली 8वें स्थान पर। और आज एक और खास दिन है ज्योति, उसकी बात करेंगे। और देखो ये उसके बारे में आज हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम खास जानकारी हासिल करेंगे। तो आज बताएं, लेकिन पहले IPL।
0: जी, IPL की हमने अपडेट दी श्रोताओं को और उसके साथ साथ हम गाने की ओर बढ़ रहे हैं। मीनाक्षी, अब क्या कहती हैं, गाना सुना जाए?
1: IPL की धुन नहीं बताओगी क्या?
0: ओ ज़रूर बजाएंगे, गाने के साथ साथ हम IPL की धुन भी बजाएंगे श्रोताओं के लिए। पर क्या गाने की शुरुआत हो चुकी कंप्यूटर से, तो उसके साथ हम

0: अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं और प्रवासी पक्षी दिवस है आज, उसके बारे में आप क्या कहेंगी?
1: बिल्कुल ज्योति, साल में दो बार प्रवासी पक्षी दिवस यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो देखो, प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का ये खास दिन होता है, उनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का दिन होता है। और झीलों की नगरी में भी हर साल विदेशी मेहमान सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मीनार में।
0: तो चलिए पक्षी मित्र दर्शन मैनारिया जी से जानते हैं पक्षियों के इस अनूठे संसार के बारे में। फोन से जुड़े हैं हमारे साथ पक्षी मित्र दर्शन मैनारिया जी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेडियो लिक्सिटी।

0: उदयपुर आज है 9 मई और हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कहते हैं परिंदों का कोई देश नहीं होता, वे सीमाएं नहीं मानते। हजारों मील का सफर, कड़ाके की ठंड और ऊंचे पहाड़ों को पार कर ये नन्हे मेहमान आते हैं हमारे आंगन तक। और जब बात हो परिंदों की, उनकी मेहमानवाजी की, तो जहन में नाम आता है मैनार का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं प्रकृति के रखवाले और पक्षी मित्र दर्शन मैनारिया जी।
1: नमस्ते सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है नमस्कार उदयपुर। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, आपको बहुत सारी बधाई।
2: धन्यवाद
1: सर। मैनार में इस दिन का क्या महत्व है?
2: मैनार में प्रवासी पक्षियों का तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो यहाँ के जलाशय है वो प्रवासी परिंदों ने इन जलाशयों को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दे दी है, तो निश्चय ही प्रवासी पक्षी दिवस का मैनार के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है।
1: जी, जो सर ये प्रवासी पक्षी है, इसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे?
2: अगर एक शब्द में प्रवासी पक्षियों को कहा जाए तो फेदर्ड फ्रेंड, हमारे पंखों वाले मेहमान हैं।
1: जो हजारों किलोमीटर दूर से यात्रा कर हमारे आंगन तक आते हैं, तो ये कौन कौन से पक्षी आते हैं इनमें?
2: जी, अब एक्चुअल देखा जाए तो माइग्रेशन दो तरह से होता है, एक तो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और एक होता है स्थानीय प्रवासी पक्षी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है वो मुख्यतः सर्दियों के दिनों में होता है, तो सितंबर अक्टूबर में आना शुरुआत हो जाती है। पहली पहल जो आने वाले पक्षी होते हैं प्रवास पे, वो हिमालय से आते हैं, जिनको वैक्टेल्स या खंजन पक्षी कहा जाता है, जिनका रामायण में भी जिक्र है कि वही नेत्रों की जो उपमा है वो खंजन पक्षी के नेत्रों से उनकी भगवान राम के नेत्रों की तुलना की गई है।
1: जी,
2: तो वहाँ जब छोटे 11 सेंटीमीटर की चिड़िया है साइबेरियन स्टोन चेट, वहाँ से लगाकर 7-7.5 फीट के लगभग जिनका विंग स्पान है पेलिकन जैसे बड़े पक्षी तक यहाँ पर प्रवास के लिए मैनार में आते हैं।
1: जी, तो इनमें कोई दुर्लभ या फिर लुप्त प्राय जो पक्षी होते हैं वो भी कुछ शामिल है?
2: निश्चय ही जब पक्षी आते हैं तो हजारों की तादाद में आते हैं, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा दुर्लभ पक्षी भी आ जाता है, या IUCN की रेड लिस्ट में डेटा बुक में जिन जिन पक्षियों को थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड या संकटग्रस्त प्रजातियों में डाले हुए हैं, तो ऐसे पक्षी भी कई सारे पक्षी मैनार की इन तालाबों पर, वेटलैंड्स पर आते रहते हैं। तो निश्चय ही मैनार में दो तालाब है, बड़े तालाब है, ब्रह्म तालाब और ढंड तालाब।
1: जी,
2: और दोनों ही तालाब इन प्रवासी परिंदों को काफी शरण स्थली के रूप में मेहमानों को अपना स्वागत करते हैं इनका। तो एक चिड़िया है ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, जो पहले प्रवास पर, सर्दियों के प्रवास पर, जिसे हिंदी में कहते हैं शिवहंस, सर्दियों के प्रवास पर मैनार आया करता था, लेकिन मैनार का वातावरण इतना मुफीद लगा उन्हें, इतना भाया कि वो भाई यहाँ का ही स्थानीय पक्षी बन रह गया,
1: यानी कि वो अब यहाँ भी रहता,
2: वो यहाँ ब्रीडिंग करने लग गया, यहाँ घोंसले बनाकर अपने परिवार, अपना कुनबा बढ़ाने लग गया, और न केवल मैनार में अपना कुनबा बढ़ाया बल्कि आसपास के वेटलैंड्स को भी पॉपुलेटेड कर दिया अपनी आबादी से। तो ये मैनार के जलाशयों की पारिस्थितिकी इतनी बेहतर है कि जो दूसरे देशों से पक्षी आते हैं उनको यहाँ का माहौल इतना भाता है कि उनमें से कई सारे यहीं के होके रह जाते हैं।
1: तो इस माहौल की जो खासियत है वो हमें बताइए, जैसे कि यहाँ के समुदाय का इसमें क्या रोल होता है कि ये पक्षी बिना किसी हिचकिचाहट के, कहें कि बिना किसी डर के यहाँ आते हैं, और एक स्टॉपेज है मैनार, यहाँ पे वो रुकते हैं पूरा सीजन।
2: जैसे मैनार, ये हमारा भारत कहें, ये हमारा राजस्थान, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक हिस्सा है, जहाँ पे हजारों की तादाद में जो प्रवास करके सर्दियों के दिनों में पक्षी आते, और प्रवास मुख्यतः होता है साइबेरिया से, मंगोलिया से, कजाकिस्तान से, सेंट्रल और नॉर्थ एशिया से। तो ये जो परिंदे आते हैं वहाँ से, सर्दियों में वहाँ बर्फ जम जाती है, खाने को कुछ वहाँ उनको मिल नहीं पाता उन ठंडे मौसम में, तो फिर इधर भारत की तरफ, श्रीलंका की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उस रास्ते में राजस्थान और हमारा मैनार भी आता है। अब इतनी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जब वो इतने सारे जलाशयों के बीच में मैनार को चुनते हैं, तो निश्चय ही मैनार का अपना एक महत्व है। यहाँ के स्थानीय समुदाय ने इन जलाशयों को इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, इतना संरक्षित रखा हुआ है, और बिल्कुल स्वार्थ रहित रूप से भी इन तालाबों से कभी भी यहाँ के स्थानीय समुदाय में, ऐसा हमने हमारी बड़वा की पोथियों में पढ़ा है, लगभग 1224 संवत में इन तालाबों की खुदाई कर दी गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो आज 2083 चल रहा संवत, लगभग 800 साल के करीब हो चुके हैं, 800-850 साल, और उसके बाद से भी कई सारी पीढ़ियां आई है। हाँ, हो सकता है हमारे बुजुर्गों को परिंदों की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इनको नुकसान नहीं पहुंचाया और एक सुरक्षित वातावरण दिया, और परिंदे क्योंकि बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ आ रहे हैं, तो उनको बस वो क्या चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, और उस सुरक्षा मैनार में मिलती है, और भोजन यहाँ के तालाबों में प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है। हर एक पक्षी की अपनी एक अलग फूड हैबिट होती है, कोई मछलियाँ खाता है, कोई एक्वेटिक वेजिटेशन खाता है, कोई कीड़े खाता है, इनवर्टिब्रेट

0: फिश खाता है, कोई एल्गी खाता है और कोई घास खाता है, और कोई एक पक्षी दूसरे पक्षी को ही खा जाता है रेप्टर। तो अलग अलग जो फूड हैबिट्स है पक्षियों की, उसके अनुसार पंछियों को यहाँ पे उनका भोजन भी मिल जाता है। तो निश्चय रूप से मैनार की जो विविधता है, जैव विविधता, वो इतनी रिच, इतनी समृद्ध है कि यहाँ के यहाँ हजारों पक्षियों को वो अपने यहाँ शरण दिए हुए हैं। तो निश्चय ही पहला तो कारण है भोजन, दूसरा कारण है सुरक्षा, और सुरक्षा में मैन यहाँ की मुख्य जो भूमिका है, स्थायी समुदाय की भूमिका है।
1: तो अब ये इतनी लंबी उड़ान वहाँ से करते हुए इतना दूर तक आते हैं, तो और फिर वापस से यही इतनी लंबी उड़ान उन्हें करनी होती है, तो निश्चित ही उन्हें पोषण के रूप से भी समृद्ध एरिया चाहिए होता है और एक सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है। आप कहते हैं कि दोनों यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल है कि
0: सही कहा आपने।
1: तो प्रवासी पक्षियों के लिए ये वेटलैंड्स क्यों जीवन रेखा के रूप में सामने आते हैं? सपोज कि अगर ये तालाब सूख जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, तो उससे इनके रूट पर क्या असर पड़ेगा?
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब पक्षी क्या है कि किसी भी परिस्थिति के लिए एक स्वास्थ्य का जो एक घटक है, जो इंडिकेटर है, वो बायो इंडिकेटर की तरह पक्षी। पक्षी पूरी तरह से बहुत प्रभावित होते हैं जैव विविधता में, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है या मौसम की जो मार है। अगर किसी वेटलैंड पे या किसी स्थान पर बहुत भारी तादाद में पक्षी आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ की जैव विविधता, वहाँ का जो स्वास्थ्य है, उसका जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छा है। और अगर पक्षियों की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वो एक इंडिकेटर है कि भाई वहाँ पे खतरा है, या तो प्रदूषण है या जलाशय सूख रहे हैं। तो निश्चय ही अगर जलाशय सूख जाएं या जलाशयों पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण से कई सारे जलाशयों पर कब्जे हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही है, तो परिंदे अपने आवास को खो रहे हैं। और आवास का खोना, उनकी ब्रीडिंग, उनकी नेस्टिंग की सेट का खोना, उनकी आबादी का लगातार गिरावट होना, और एक बार आबादी में गिरावट जो शुरू हुई वो संकटग्रस्त प्रजातियों में जाएंगे और कभी कभी फिर लुप्त भी हो जाते हैं। तो निश्चय ही किसी जलाशय का सूखना या उसका खत्म होना पक्षियों की आबादी के लिए बहुत ज्यादा एक खतरनाक स्थिति बन जाती है।
1: साधारण नागरिक अपने स्तर पर पक्षियों के संरक्षण में कैसे योगदान दे सकता है?
0: अब सबसे बड़ा, अगर नमस्कार उदयपुर को मैं बताऊं कि कोई भी आम आदमी है, पक्षी एक ऐसा फिनोमिना है जो आजकल थोड़ा ट्रेंड में आया है। पहले पक्षियों, आसपास के परिंदों को हमारी भारतीय संस्कृति में ऑलरेडी संरक्षण दिया गया था पहले से ही। जैसे भारतीय संस्कृति में जब पहले नाखून भी काटते थे, लोग तो संभाल के उसको इधर उधर फेंक नहीं देते थे, संभाल के उसको एक ऐसी सुरक्षित जगह पे डालते थे कहीं गौरैया आके उसको चुक उसको लेकर अपने बच्चों को नहीं खिला दे, कहीं वो बच्चे नहीं मर जाए, कीड़ा समझ के खा लेंगे। तो उन्हें हमेशा अपनी जो संस्कृति है, उन परंपराओं में हमने हमेशा पक्षियों के संरक्षण की बात की है। पक्षियों को दाना डालना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, और निश्चय ही परिंदों को जब संरक्षण कब होगा, जब उनको जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, उनको रंग संयोजन जानेंगे, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे, तो उनसे हमारा जुड़ाव होगा, और जुड़ाव होगा तो निश्चय संरक्षण अपने आप हो जाएगा।
1: और इस वर्ष की थीम है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस की, कि हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका अवलोकन मायने रखता है। यही बात आप भी कह रहे हैं कि हम सबको हर पक्षी से जुड़ाव होना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है वो उन्हें रील बनाना पसंद है, पर्यटन करना पसंद है, वो घूमने आ सकते हैं, लेकिन ये जैसे अब हम, क्योंकि मैनार का नाम हम काफी लोकप्रिय भी हो चुका है, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, तो इन टूरिस्ट की वजह से या पर्यटन की वजह से इन पक्षियों को किसी तरह का तनाव ना हो, उनकी साइट्स पर परेशानी ना हो, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए?
0: मैं ये बताना चाहूंगा कि मैनार में पक्षी जो सैकड़ों सालों से, सदियों से यहाँ पर सुरक्षित रहे हैं, वहाँ पर स्थानीय समुदाय की जो एक नीति है, एक इनकी परंपरा है, वो क्या है कि भाई उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए उनकी जिंदगी में, क्योंकि वो पालतू नहीं है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में उनको रहना होता है। कई बार अपन जाते हैं तो देखते हैं कि पर्यटन स्थलों पे जा रहे लोग मछलियों को दाना डाल रहे हैं, पंछियों को दाना डाल रहे हैं, उनको आर्टिफिशियल फीडिंग की जरूरत नहीं होती है, उनको प्रकृति में ने अपना भोजन दिया है, उनको अपना भोजन करने दीजिए। हम अपने पुण्य के चक्कर में, हम चाहते कि अपने हाथ से कुछ अच्छा करें, तो अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर देते हैं उनको आर्टिफिशियल फीडिंग करवा के। तो मैं जो लोग जो पर्यटन के दृष्टि से या पक्षियों में जो रुचि लेकर ऐसे स्थानों पर जाते हैं, उनसे मैं ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि वे आर्टिफिशियल फीडिंग न करवाए उनको, और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको वो डिस्टर्ब न करें, उनको अपने हाल पर उनको जीने दें, और उनको जो उनकी एक्टिविटी है जो नेचुरल वो कर रहे हैं उसको एंजॉय करें।
1: इस दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे हम सभी को इस तौर पर कि एक पक्षी मित्र होना आपके लिए ये खुद ये अनुभव कैसा है?
0: मेरे लिए अनुभव तो इतने इसलिए बड़ा है कि मैं अभी हमने एक हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जनवरी में, पक्षी मित्र द स्टोरी ऑफ मैनार। वो दिखाती है कि कैसे

0: प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने AI, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया अपितु तो भारत का पवेलियन वहाँ आज इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बने। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF

0: के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूटीबी में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैस कांड में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
1: ढाणी गैस कांड गांव से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें से अभी तीन बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इस शिकायत के आधार पर सीबीओ साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी तीन बच्चे वहाँ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
0: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: नमस्कार, उदयपुर में आपका फिर स्वागत है। 101.9 FM बैंड और मीडियम वेव 266.66 मीटर पर।

0: मीनाक्षी 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप अपनी वीरता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष में समर्पित कर दिया। आज हम फोक एंड रूट सेगमेंट में बात करेंगे महाराणा प्रताप के से जुड़े हुए स्थान, स्मारक। हम याद करेंगे उन स्थानों को
1: जो बिल्कुल ज्योति। और महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो हमेशा तिथि के हिसाब से मेवाड़ मनाता रहा है, और उनसे जुड़े इतने जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है हल्दी घाटी का।
0: बिल्कुल, 1576 में महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल मुगल सेना को चुनौती दी थी। ये दर्रा है राजपूतों के अदम्य साहस का प्रतीक, और यहीं प्रताप के घोड़े चेतक ने अपना सर्वोच्च

0: बलिदान दिया था। यहाँ की मिट्टी आज भी माथे पर तिलक लगाने की याद दिलाती है। हल्की पीली सी मिट्टी है और ये स्थान है उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर। यहाँ इतिहास रचा गया था।
1: बिल्कुल, और यहाँ का गुलाब का शरबत बहुत फेमस है ज्योति। गोगुंदा को हम कैसे भूल सकते हैं, ऐतिहासिक संबंध रहा है इस स्थान से महाराणा प्रताप का। यहाँ पे उनका राज तिलक हुआ था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद उन्होंने यहीं से अपनी सैन्य गतिविधियों को जारी रखा। यहाँ की पहाड़ियों में रहकर मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। मायरा की गुफा भी यहीं पर है। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान प्रताप ने इसे अपना शस्त्रागार और निवास के रूप में चुना था। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो राजसमंद जिले के स्थित में यह किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रहा है। यह उनकी शक्ति का केंद्र था। ऐतिहासिक किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा और इसके अंदर के सबसे ऊंचे हिस्से को कटारगढ़ कहा जाता है। मेवाड़ की आंख भी इस किले को कहा जाता है और चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे ऊंची लंबी दीवार इसे माना जाता है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर तक है।
0: चावंड को हम कैसे भूल सकते हैं। 1557 में चावंड में ही 57 वर्ष की उम्र में यहाँ शिकार दुर्घटना के बाद महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। अंतिम श्वास और उसके बाद का शोक यहीं संपन्न हुआ। चावंड में अपने प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप ने चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण कराया था। तो आगंतुक यहाँ जब जाते हैं सैर करने के लिए तो इस महल के खंडहर देख सकते हैं जहाँ वो रहते हैं। इस क्षेत्र में उनके और उनके सहयोगियों को सम्मानित करने वाली प्रतिमा स्थापित है।
1: बिल्कुल ज्योति, और जो ये हल्दीघाटी युद्ध था ना, ये तो एक शुरुआत थी मेवाड़ को हासिल करने की। अकबर की और मुगलों की जो नाकाम कोशिश थी वो एक शुरुआत थी एक युद्ध की। इसके बाद कई युद्ध खेले गए और जो एक निर्णायक युद्ध रहा था वो था दिवेर का, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। महाराणा प्रताप ने मुगलों की चौकी पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इस युद्ध में मुगलों का जो मनोबल था वो पूरी तरह से तोड़ दिया था महाराणा प्रताप ने। दिवेर छापली से महाराणा प्रताप को यश और विजय दोनों प्राप्त हुए और दिवेर छापली तथा मगरांचल के जो वीर रावत राजपूत थे उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके नेतृत्व में अदम साहस का शौर्य का परिचय दिया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि मातृभूमि की रक्षा के विजय पताका फहराने तक मुगलों में नहीं रहने और जंगल क्षेत्र में उन्होंने वो रहे। और देखो, उन्होंने एक एक करके जो वो कुछ क्षेत्र मुगलों ने अपने हथियार लिए थे उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसमें बांसवाड़ा, सलुम्बर, एकलिंगगढ़, खेरवाड़ा, बिजौलिया, वागड़, कई क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं।
0: और अगर आप शहर में हैं मीनाक्षी तो मोती मगरी जाना भी ना भूलें। फतहसागर झील के किनारे पहाड़ पर स्थित महाराणा प्रताप की विशाल कांस्य प्रतिमा मानो पूरे शहर पर सुरक्षा दृष्टि रख रही है। ये प्रतिमा मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह द्वारा प्रताप की वीरता, खासतौर पर वो जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसी के दौरान उनकी वीरता को सम्मानित करने के लिए बनवाई गई एक प्रतिष्ठित और विस्मयकारी श्रद्धांजलि है। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बीच के बंधन का प्रतिनिधित्व करती है ये प्रतिमा, कि जिसने उन्हें युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। यहीं पे होता है शाम को लाइट एंड साउंड शो जो हमें गर्व से भर देता है। कहते हैं मेवाड़ का हर कंकड़ शंकर है, हर पत्थर में एक कहानी है। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया कि जड़ों के लिए लड़ना पड़ता है। जिनकी तलवार की खनक से अकबर का दिल भी डोल गया, वो प्रताप था मेवाड़ी जो मौत के मुँह में बोल गया। उनकी माटी का गुणगान करते हैं, उन्हें याद करते हैं और ये गाना सुनते हैं।

0: ऐसे वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन हम मेवाड़ में मनाएंगे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि को, और इस बार वो तिथि है मीनाक्षी 17 जून 2026 बुधवार को।
1: बिल्कुल इंतजार रहेगा उस दिन मेवाड़ के गौरव का।
0: और
1: अब सुरक्षा की बात की जाए तो देखो अवेयरनेस में आज हम सड़क सुरक्षा और सुरक्षित जीवन की जो बात करेंगे, आपने देखा होगा कहीं भी आते जाते वक्त ज्योति सड़कों पर ना सफ़ेद लाइनें बनी होती हैं, कुछ लाइनें सॉलिड होती हैं, कुछ बीच बीच में से टूटी हुई होती हैं, लेकिन जानती हो कि इनका मतलब क्या होता है? सड़कों पर ये लाइन्स, ये पट्टियाँ क्यों बनी होती हैं? और सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं होती ना?
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो देखो जो सफ़ेद ब्रोकन लाइन होती है, ये लाइन सड़क के बीच में बनी होती है और इसमें छोटे छोटे गैप होते हैं। इसका मतलब है कि वाहन चालक लाइन को पार कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो और सुरक्षित हो। और यह लाइन आमतौर पर उन सड़कों पर बनाई जाती है जहाँ ट्रैफिक कम होता है या वाहनों की गति धीमी होती है, जैसे कि आप सिटीज में देखते होंगे।
0: बिल्कुल, अगर एकदम सीधी सफ़ेद लाइन है तो ये लक्ष्मण रेखा है, यानी कि आप अपनी भी लेन में रहें और ओवरटेक करना या यू टर्न करना यहाँ मना होता है। ये अक्सर उन जगहों पर होती है जहाँ एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल। और एक होती है डबल व्हाइट लाइन। जब सड़क पर दो समानांतर सफेद लाइनें बनी होती हैं तो इसका मतलब है कि वाहन चालकों को किसी भी हालत में लेन नहीं बदलनी है। यह लाइन उन जगहों पर बनाई जाती है जहां ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होता है, जैसे हाईवे या बहुत व्यस्त सड़कें।
0: बिल्कुल, पीली लाइन अगर आपने देखी होगी सीधी, तो इसका मतलब होता है नो ओवरटेकिंग ना, तो इस अपनी लाइन में चलते रहें। और साथ साथ अब मीनाक्षी जो चौराहे पर एक सफ़ेद लाइन बनी होती है जो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, ये बताती है कि ये चौराहे की लिमिट है, इससे आप पार करें तो ट्रैफिक पुलिस का कैमरा आपका चालान की फोटो क्लिक करने के लिए तैयार होगा।
1: बिल्कुल। और वाइट एरो मार्किंग भी होती है सड़क पर, कई बार जो है ना सफ़ेद तीर के निशान बने होते हैं जो बताते हैं कि गाड़ी को किस दिशा में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सीधे जाने वाले के लिए तीर का मतलब सीधा तीर होता है, गाड़ी को केवल आगे जाना है, जबकि मुड़ने वाले के लिए गाड़ी को उसी दिशा में मुड़ना है।
0: तो कहें कि हम सड़क की भाषा समझेंगे तभी तो मंजिल तक सही सलामत पहुंचेंगे। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का ये वक्त चल रहा है तो नियमों का पालन कीजिए, इन्हें जानिए और इनसे परिचित होइए।
1: और खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए,
0: साथ साथ कानूनी परेशानियों और दुर्घटनाओं से भी बचिए।

0: बिल्कुल, देखो चलते चलते हमारे आकाशवाणी के भी 90 वर्ष होने वाले हैं। एक लंबा सफ़र तय किया है आकाशवाणी ने। 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब से शुरुआत हुई और उसके बाद 1936 में से आधिकारिक रूप से AIR का नाम मिला, जो बाद में आकाशवाणी बना। विविध भारती सेवा 1957 में शुरू की गई। यह सेवा लोकप्रिय फिल्मी संगीत, जयमाला, छाया गीत और भूले बिसरे गीत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे लोकप्रिय मनोरंजन सेवा रहा है। और आज मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें तो आकाशवाणी ने लोक संगीत, क्षेत्रीय बोलियों और शास्त्रीय गायकों के कार्यक्रमों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा है। वर्षों से रेडियो नाटक, हवा महल, जयमाला, रेडियो के ड्रामास, संगीत कार्यक्रमों के लिए जरिए जो है जनता का मनोरंजन करता रहा है। आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं के साथ सीधे संवाद भी हुए हैं और आजकल तो व्हाट्सएप के प्रोग्राम भी चालू हो चुके हैं। देश भर में फैले 420 से अधिक स्टेशंस के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा संगीत में मनोरंजन प्रदान करता आया है आकाशवाणी। डिजिटल मनोरंजन में भी अब आकाशवाणी पीछे नहीं है। DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध है इसकी सेवाएं, आधुनिक मनोरंजन का हिस्सा बनाते हैं और आकाशवाणी आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में मनोरंजन का एक विश्वसनीय और सस्ता माध्यम बना हुआ है।
1: तो आज एंटरटेनमेंट लाउंज में हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का जश्न, जिन्होंने हमारी संस्कृति और मनोरंजन को गढ़ा है। विविध भारती की शुरुआत के साथ ही जितना संगीत से हमें प्यार हो गया है, जितना हम लोग इस तरह इस माध्यम से जुड़े हैं, वो जादू आज भी बरकरार है। और यही सारा ये जो प्रोग्राम कहें या फिर ये जो 90 वर्ष है, एक तरह से उन सारे इंजीनियर्स को, उन सारे अनाउंसर्स को, उन सारे प्रोग्राम बनाने वाले जो योगदान करने वाले लोग हैं, उन सभी को समर्पित है कि उन्हीं की वजह से फ्रीक्वेंसी भली बदल जाए पर आकाशवाणी की यादें हमेशा हमारे मन के रेडियो पर बजती रहेंगी।
0: तो सुनते रहिए हमेशा। और अब ज्योति समय हो गया है कार्यक्रम से अनुमति लेने का। तो श्रोताओं, आज नमस्कार उदयपुर के अंक में मैं थी मीनाक्षी
1: और मैं ज्योति।
0: तो दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

आ जाए कोई शायद, दरवाज़ा खुला रखना। भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह की आवाज़ों में ये रचना आपने सुनी। सुगम संगीत की अगली प्रस्तुति ये गीत।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: Akashvani at 90.
1: आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर से मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को है, ये वक्त है शीर्षक गीतों का। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम शीर्षक ले रहे हैं घर। आइए इस शीर्षक से कुछ गाने सुनें।

शीर्षक गीत में आज हमारा शीर्षक एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आंखों के सामने ईंट गारे की दीवारें नहीं बल्कि माँ के हाथ की रोटियाँ, आंगन की धूप और अपनों की मुस्कुराहट तैर जाती है। घर।

वाकई हम जिंदगी की भाग दौड़ में चाहे जितने दूर निकल जाएं, शाम होते ही कदम अपने आप उसी एक पते की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सुकून की सिर्फ एक ही मुकम्मल जगह है और वो है हमारा घर।

सारा घर सुना सुना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सुना सुना है, मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। गर्म हवाएं चल रही थीं और मैं अपने घर में था। घर जो मुझे हर धूप से बचाता है, घर जो मेरी तन्हाइयों को सजाता है।

शीर्षक गीतों के सफ़र में उम्मीद है घर शीर्षक के ये गाने आपको पसंद आए होंगे। चलिए अगले शीर्षक का रुख करते हैं और गाना सुनते हैं।

माँ शब्द ज़ुबान पर आते ही दिल को एक ठंडी छाँव का एहसास होता है। एक ऐसा शब्द होता है माँ, जो पूरी कायनात समेटे होता है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, सफल हो जाएं, माँ जब सर पर हाथ रखती है, फिर से वही बचपना लौट आता है।

निदा फाजली ने कहा था, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, सारे रिश्ते नाते कीचड़ थके हारे, कड़ी धूप में बरगद की छांव जैसी माँ।

आज हम बहुत व्यस्त हो गए हैं। माँ के पास बैठती कहाँ है? याद है वो दौर था जब उनके बिना एक दिन नहीं निकलता था, एक घंटा नहीं निकलता था।

कल हम मदर्स डे मनाएंगे, क्या माँ के नाम सिर्फ एक दिन काफ़ी है? कभी भी माँ से मिलिए, उन्हें फ़ोन करिए और उनसे कहिए आपकी याद आ रही है। उनके चेहरे की मुस्कान देखिएगा, वो मुस्कान, वो उजली सी खिली मुस्कान आपका जीवन बना देगी। शीर्षक गीतों के इस सफ़र में दूसरे भाग में हमने सुने माँ शीर्षक से गाने, और ये आखिरी गाना आपके नाम करते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे।

मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं और ये समय है शास्त्रीय संगीत का। आइए आज सुनते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन और तबले पर संगत की है पंडित जाकिर हुसैन ने।

संतूर और तबले की अच्छी सी एक प्रस्तुति अभी हम सुन रहे थे। अगली रचना भी पंडित शिव कुमार शर्मा और जाकिर हुसैन की जुगलबंदी की है।

शास्त्रीय संगीत में अभी हम सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा एवं जाकिर हुसैन का संतूर के साथ तबला वादन की जुगलबंदी।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे ठुमरी। सबसे पहले मिश्र तिलंग में ये ठुमरी है जो कि ताल चांचार में बद्ध की गई है। इस ठुमरी का नाम है काटेना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ठुमरी गायन मिश्र तिलंग और मिश्र भैरवी में। मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। जिंदगी एक सफर है, कभी धीमा तो कभी तेज, और हर पल हमें कुछ सिखा कर ही आगे बढ़ जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन्हीं पलों की जो आते जाते रहते हैं, ठहरते नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उन पलों में जो संजोई हुई कुछ बातें, वो हमेशा हमारे पास में रह जाती हैं और वो यादें हमारे अंदर बस जाती हैं। कहते हैं कि ये दुनिया, ये नाम, ये शोहरत सब यहीं रह जाने वाला है। जो साथ जाएगा वो है हमारे कर्म और हमारी सच्चाई। शायद यही बातें हमें याद दिलाती हैं इस गीत के बारे में।

कभी सोचा है हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो भी एक दिन पीछे छूट जाएंगी, तो क्यों ना आज ही अभी से दिल से जी लिया जाए हर एक पल। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, न कल रुका था न आज रुकेगा, लेकिन जो पल हमारे पास है वो ही सबसे कीमती है। तो आइए उसी पल को महसूस करते हैं इस गीत के।

ये पल, ये दो पल कुछ ऐसे ही बीत जाते हैं। कभी कभी जीवन अपनी खुशी में ही नहीं, किसी और के मुस्कुराहट में भी हमारी खुशी बन जाती है। यही जिंदगी की असली जीत हो जाती है। इस भाग में अभी हम कुछ पुराने गीत सुन रहे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख हमें दिखलाई है जीवन की। अगले भाग में, यानी कि अब जो आधा घंटा है फिल्म संगीत का, इसमें हम सुनेंगे नए जमाने के गीत, जो कि संदेश वही देते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी की जो तस्वीर है वो हर रूप में कुछ नया लेकर आती है। हर पल में बदलती हुई ये तस्वीर कुछ कह जाती है। हमेशा आगे की सोच रखना ही हमारी सफलता की पूंजी रहता है। ज़िंदगी कभी कभी एक सन्नाटे के जैसे लगने लगती है, लेकिन यदि हम किसी के भरोसे पर खरे उतर पाएँ, यदि हम आज के दिन में किसी और को मुस्कुराहट दे पाएँ, तो फिर बात ही क्या। अक्सर दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं बहुत लोग, लेकिन आप यदि किसी का सहारा बन पाए तो फिर उस व्यक्ति का केवल दिन ही नहीं बल्कि जीवन भर भी सुधर सकता है। ये गीत शायद इसी तरह की कोई बात कहता है।

कभी-कभी लगने लगता है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। हम थक कर बैठ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने दिल की उस छोटी सी धड़कन को सुना है जो धीरे धीरे से ये कहती रहती है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, एक बार फिर से कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।

हम अक्सर बड़ी सफलता और बड़ी खुशी के इंतज़ार में आज की छोटी छोटी जीत को भूल जाते हैं, छोटी छोटी मुस्कुराहटों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगला गीत भी कुछ ऐसा ही बताता है, छोटे छोटे पलों में हर सुबह की जैसे पहली धूप हुई या किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना, या फिर चाहे अपने सामने

श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि ये जीवन बहुत कठिन होता है, हालांकि होता भी है। कई बार एक पूरा का पूरा जीवन हमारा हर दिन नई चुनौती लेकर आता है। यानी कि यदि हम माने कि जीवन खुद एक अखाड़ा है और हर चुनौती एक हाथी के समान, बड़ी पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ी होती है, तो जीत उस समय उसी की होती है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने का साहस रखता है। एक बार यदि हमारे अंदर साहस आ जाता है तो आधी जंग तो हम यूं ही जीत लेते हैं। ये गीत भी हमें कुछ ऐसी ही सीख दे रहा है।

श्रोताओं, आज का ये सफ़र फिल्म संगीत का यहीं ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, ना कल रुका था ना आज रुकेगा। समय हमेशा गतिशील रहता है, चलता ही रहता है। जो पल हमारे पास में है बस वही कीमती है। इसी पल को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब समय है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र, मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है।

जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार

0: राम राम रेखा भैसा, राम राम
1: राम राम अनुश्री भैसा, राम राम
0: सहेली अरी बाड़ी कार्यक्रम होने वाली हंगली आपानी बेना ने और जो कर भाई लोग होनी रहे थोड़ा भाइया ने भी आपानो
1: राम राम सा।
0: देखो सब ऐसा अपनों कार्यक्रम रो टेम वेवे और अपा अपनी बहना रे वास्ते लावा भांत भांत री जानकारियाँ, कोई दिवस वेवे तो दिवस रे बारे में जानकारी, योजना और कटी घूमवा फिरवा जावा री जगह भी आपा बतावा हाँ, कई खान पान बनानो वे तो भी बतावा हाँ। तो देखो सा आज आपा सब पहले अपनी बहना ने बतावा कि महिला नेतृत्व क्षमताओं जो ग्रामीण क्षेत्र है मंडो विकास किस तरह भी सके।
1: बिल्कुल सा देखो अनुसी भैसा, जटे बात करा आप महिला नेतृत्व री तो ग्रामीण विकास की दिशा में जो भी महिलाएं हैं वणारो नेतृत्व क्षमता आज आप ही देखा कि एक मजबूत आधार बनियो जाई रो ऐसा। और गांवों में भी जो महिलाएं हैं वी निर्णय लेवारी भूमिका में अगर आवे तो केवल वणारो जीवन ही नहीं बदले बल्कि लारे लारे अपने पूरे समाज में भी जो सकारात्मक परिवर्तन वेवे वी दिखाई देवा लाग जावे सा।
0: सही बात है सा। देखो कई है कि महिला नेतृत्व रो प्रभाव जो है गाँव वाली सामाजिक आर्थिक स्थिति पे आपा देखा हाँ। जना कोई बहन आगे बढ़ीन समूह रो नेतृत्व करे तो वह खाली अपने वास्ते नहीं बल्कि पूरा समुदाय रे हित में काम करे। बेना गाँव री वास्तविक समस्या रे घनी नजदीक वे वे है। पानी री कमी, टाबरा री पढ़ई, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, जो रोजगारी जरूरत पे अपनी जो बेना है ज्यादा संवेदनशीलता ध्यान देवे। यो इस कारण है कि जटे बेना रे नेतृत्व अवसर मिले बटे विकास की गति तेज वे है।
1: बिल्कुल सा देखो आज देश रे कई बड़ा गांव में जो महिलाएं हैं वे स्वयं सहायता समूह रे माध्यमों आर्थिक रूप आत्मनिर्भर भी बन रही है। छोटा छोटा जो बचत समूह है जटू चालू भी हुए यह प्रयास अबे रोजगार और स्वरोजगार एक बड़ो माध्यम भी बन रही है सा। लारे लारे जो महिलाएं डेयरी, सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, खेती और जो छोटा उद्योग है वणों भी अपने हिसाब छूड़ने और अपनी आय बढ़ाई रही है। जणु की अपने परिवारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और गाँव में भी जो रोजगार नया अवसर पैदा हो रहा है सा।
0: सही बात है सा। और जटे पंचायती राज व्यवस्था री बात करा तो देखो बेनारी भागीदारियों कही है ग्रामीण विकास ने नवी दिशा मिले। गाँव री महिला सरपंच, जनप्रतिनिधि, शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसी योजना वाने बेहतर तरीका लागू करे। और कई जगह पे तो बेना जो है बाल विवाह, नशाखोरी और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक समस्या रे खिलाफ भी आवाज उठावे। अणी कही है कि गाँव में जागरूकता आवे। केवारो मतलब यू इसे कि महिला वाला नेतृत्व केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, खेती, पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी बेना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है।
1: बिल्कुल सा देखो शिक्षा और जागरूकता ने महिला में आत्मविश्वास बढ़ायो है यो आपा सब जान रहे हाँ। आज ग्रामीण क्षेत्र री जत्री भी बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही है, विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यदि गांव में एक महिला सफल वेवे तो आप ही के वाग वे दूसरी महिला रे वास्ते भी प्रेरणा बनती जा रही है। अणियो अपने समाज री सोच भी बदल रही है। महिलाओं में जो बराबरी रो सम्मान मिलवा लागू है वो सब भी आपा देखने आसा।
0: बिल्कुल सा। और आनी मिला रहे आपने यो भी ध्यान रखना है कि सामाजिक स्तर पर भी आप जो बराबरी री बात कर रहे हो तो सामाजिक स्तर पर भी वेणी छावे। समाज रे हर वर्ग री जो बेना है विकास री प्रक्रिया में शामिल वे वे अपने जो बेना है बनाने यो देखना है कि एक ही समाज आगे नहीं बढ़े बल्कि सर्व समाज ने लारे लेन चालनो है और सब ने नेतृत्व देनो है ताकि कहीं गांव रो विकास अच्छी तरह वे सके।
1: बिल्कुल सा देखो अनुश्री वैसा आप ही बात की थी कि भाई महिला नेतृत्व क्षमताओं जो ग्रामीण विकास वेनु है वो सब आपा सब जान रहे हाँ। अपने साथ में वनडे साथ में देश की प्रगति वे रही है, सामाजिक उत्थान भी वेरु है और जो अपनी बहना आगे बढ़ने अणा काम में सहयोग कर रही है तो वह आप ही कह सका कि काबिले तारीफ है। और क्यों नहीं अगर आप ही चाहवा कि अपनी बहना और भी आगे बढ़े तो जितनी भी बहना अगर एक दूसरा में जुड़ी तकी है गाँव में भी तो भी नया रोजगार सृजन

0: करें और वणा ने अपना वारी कोशिश करें ताकि आपने आय रे साधन में भी बढ़ोतरी वैसा।
1: बिल्कुल सर, देखो बढ़िया जानकारी आपने बेना ने आपने दी थी। हाँ, और अगर अबे आपके वो एक बढ़िया सो गीत भी सुनाई था सा।
0: हाँ सा।

0: अनुश्री वैसा ही तो हुने मन भवन राजस्थानी गीत और पहला हुने आप ही संदेश भी हुने सा और अब अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा तो क्यों नहीं आप ही हगली बहनों बात करा कि जो डिजिटल साक्षरता रे अंदर जो ई गवर्नेंस सेवा है वे आप ही किस तरह काम में कर लेवा सा।
1: बिल्कुल भाई सा, देखो ई गवर्नेंस

0: इसरो मतलब अगर आप केवा तो सूचना और संचार तकनीकी रो उपयोग करें सरकारी सेवा जो है वणा ने जनता तक ऑनलाइन माध्यमों पहुंचाणो इन्हें आप ई गवर्नेंस सेवा कह सका। अंडो उद्देश्य जो है लोगा ने लोगारो समय बचावणो है, काम में पारदर्शिता लावणो है, सरकारी योजना वारो लाभ आसानी उपलब्ध करावणो है। और जटे आप देखा कि आज इंटरनेट और मोबाइल की सहायता हो कई सरकारी सेवा घर बैठा आप प्राप्त कर सके रहा।
1: बिल्कुल सा देखो, अबे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल, पानी बिल, बैंकिंग सेवाएं और विभिन्न प्रकार की जो सरकारी सेवाएं हैं या योजनाएं हैं, वे सब अणी जुड़ी तक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। जो भी लोग अपना मोबाइल अपने कंप्यूटर के माध्यमों आवेदन कर सके, वंडी स्थिति भी देख सके, और अणियों जो लोग हैं वणा ने बार बार कार्यालय जावरी आवश्यकता भी कम वी गई सा।
0: सही बात है सा। देखो ई गवर्नेंस सेवा रो सब मोटो लाभ आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखवाने मिल रहे है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC रा माध्यम लोग कई है डिजिटल सेवा उपलब्ध वे रही है। और कई केंद्र पे तो किसान, विद्यार्थी, अपने जो बेना है वे बुजुर्ग आसानी सरकारी योजना वाली जानकारी प्राप्त कर ले। अणियों कई है कि गाँव और शहर के बीच की जो दूरी है वह कम वेगी और डिजिटल सुविधा गाँव तक पहुँचवा लगी है।
1: बिल्कुल सा देखो, कृषि क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस सेवाएं किसान आरे वास्ते बहुत उपयोगी साबित हो रही है। किसान मौसम की जानकारी, बीज खाद, फसल बीमा और सरकारी सहायता योजना की जानकारी ऑनलाइन घरे बैठा ही प्राप्त कर रहा है। कई भी राज्य में भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया है, जनी में किसान ने अपनी जमीन संबंधित जानकारी भी आसानियों मिल जावे सा।
0: लारे लारे देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यानी महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थी ऑनलाइन छात्रवृत्ति रे वास्ते आवेदन कर सके, परीक्षा परिणाम भी इंटरनेट के माध्यमों देख सके, फार्म भी भरी सके। और जटे स्वास्थ्य सेवा की बात करा तो ऑनलाइन पंजीकरण, अस्पताल की जानकारी, टेलीमेडिस्टेशन जैसी जो सुविधा है लोगों ने आसानी मिल रही है और बड़ी राहत दे रही है।
1: बिल्कुल सा भाई, देखो कि ई गवर्नेंस सेवाएं जो सरकारी कार्य में जो पारदर्शिता बढ़ाई है, वणी में ऑनलाइन प्रक्रिया वो भ्रष्टाचारी संभावना भी कम वेवेसा, कार्यारी निगरानी भी आसानियों आपी कर सका, लोग अपने आवेदन की स्थिति स्वयं देख सके, जणियों की वणारो विश्वास भी बढ़ रो है और अपने समय री बचत भी वे रही सा।
0: बिल्कुल सा देखो, हालांकि ई गवर्नेंस ने पूरी तरह सफल बनावारे वास्ते डिजिटल साक्षरता घनी जरूरी है और लोगों ने इंटरनेट और ऑनलाइन सेवा वाला उपयोग की सही जानकारी वेणो भी जरूरी है। साथ ही साथ देखो, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट सुविधा ने मजबूत बनावनो भी जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित तरीके वाला सेवा वालों लाभ उठाई सके।
1: बिल्कुल सा, ई गवर्नेंस सेवाएं आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है सा। या केवल तकनीक रो उपयोग नहीं बल्कि जो लोग हैं वणा ने बेहतर और आसान सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रो एक माध्यम भी बन गयो है सा। डिजिटल सेवा रे विस्तार में देश तेजी विकास री ओर बढ़ रो है और आम नागरिक रो जीवन भी अधिक सरल, सुगम और सुविधाजनक भी तो जी रो ऐसा।
0: सही बात है सा। और अगर आना सेवा वालों आप लाभ उठावा तो आप काफ़ी फायदों ले सका हाँ। और साथ ही साथ देखो, आपने तो लाभ उठानो ही है, अपने आसपास जो लोग अनजान है वनाने भी अंडो लाभ देनो है और जो जानकार नहीं है वनाने अंडी जानकारी देनी है। तो वैसा देखो, या तो आप जानकारी दीदी आपने डिजिटल साक्षरता री, और अगर आप कहो तो गीत और सुन ला सा बढ़िया सो।
1: हाँ सर।

0: तो अनुश्री वैसा है तो उन्हें वहाँ पर राजस्थानी गीत और अब अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और सगली बहनों जानकारी करावा कि जो पंचायती कार्य में वे वणी में अपनी कई सहभागिता रही सके सा।
1: बिल्कुल सा, देखो ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण विकास की सब महत्वपूर्ण इकाई आप माना गाँव रे विकास जुड़िया तक का जो अनेक काम है पंचायत रे माध्यमों करिया जावे सड़क पानी स्वच्छता शिक्षा स्वास्थ्य बिजली ये बात बात सरकारी योजना जो भी है वनारो लाभ भी लोगों तक पहुँचावा में पंचायत री मोटी भूमिका वे वे पर पंचायत वंदाणी सफल वे सके जना गाँव रा लोग वंडा काम में सक्रिय सहभागिता निभावे पंचायत रा काम में लोगों री भागीदारी गाँव रा विकास ने मजबूत और प्रभावी बनावे है।
0: बिल्कुल सा, देखो वैसा आप ही कहवा कि पंचायत कार्य में जो सहभागिता रो अर्थ है गाँव रा लोग जो विकास जुड़िया तक निर्माण योजना और वटारे कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभावे ग्राम सभा में उपस्थित वे ने अपनी राय देनो गाँव री समस्या रे सामने राखनो और योजनारी जानकारी प्राप्त करनो भी सहभागिता रो महत्वपूर्ण हिस्सो है। ये लोग पंचायत रे कार्य जुड़े और अपना जो विकास कार्य है वणी में और अधिक पारदर्शी और वणा ने जनहितकारी बनावे सा।
1: देखो सा ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था री महत्वपूर्ण कड़ी माना आपा गाँव रा लोग मिली ना अपने क्षेत्र री समस्या और जरूरता पे चर्चा करे गाँव में सड़क कटे वणेला पानी री व्यवस्था किस तरह वेला स्वच्छता अभियान किस तरह चलायो जावेला और कणा लोगों ने सरकारी योजना रो लाभ मिलेला जैसा विषय पे ग्राम सभा में विचार प्रकट करो जावे अने यूं कही है कि लोग ग्राम सभा में भाग नहीं लेवे तो कई बार योजना वा सही तरीकों सही लोगों तक नहीं पहुँच सके है।
0: बिल्कुल वैसा, आप ही जाना कि जो महिला है वनारी सहभागिता पंचायत कार्य में विशेष रूप महत्वपूर्ण वे महिलाएं परिवार और समाज की आवश्यकता ने अच्छी तरह समझे और वंडे साथ में जो युवा वर्ग है वंडी भागीदारी भी पंचायत

0: विकास में नई ऊर्जा लावे सा। युवा शिक्षा तकनीक और जागरूकता रे माध्यमों गांव ने आगे बढ़ावा में भी मदद करें। लारे लारे जो डिजिटल सेवा है, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता जैसा कार्य में भी युवा री भूमिका बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था।
1: हाँ जी बात ऐसा, देखो पंचायत काम में सहभागिता पारदर्शिता बढ़े है और पंचायत काम में सहभागिता लोकतंत्र री वास्तविक पहचान बने है। जनान गाँव रो हर आदमी व्यक्ति विकास काम में भाग ले है तो गांव आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने और सामूहिक प्रयास और जागरूकता री भागीदारी ग्रामीण विकास रो सपनों जो है वो साकार वेवे है सा।
0: बिल्कुल वैसा, देखो पंचायत कार्य में अगर ग्रामीण परिवेश में रहने वाला जतरा भी व्यक्ति है, वे अगर अपनी संपूर्ण सहभागिता भागीदारी अगर निभाएगा तो आप ही कह सका कि अपने गाँव रो विकास और अधिक बेहतर वेगा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो ये तो जानकारी दीदी आप पंचायती काम में सहभागिता रही, अबे देखो आप कार्यक्रम में आवा हाँ तो आप जानकारी रे लारे लारे मनोरंजन रो भी आप ध्यान रखा हाँ, तो आप के वो तो एक बढ़िया सो गीत और सुनाई दासा।
0: हाँ सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सहेलिया रिबाड़ी। मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं मोहित चौहान की आवाज में इस गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का, और अब इस फिल्म संगीत का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म केदारनाथ से, देवनेगी की आवाज़ है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, और अब समय हो चला है कार्यक्रम विकास चर्चा का। मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। दोपहर के 2 बजने को हैं। आइए सुनते हैं विकास चर्चा। प्रधानमंत्री ई परिवहन सेवा योजना के बारे में आज हम बात करेंगे।

प्रधानमंत्री ई परिवहन सेवा एक भारत में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को सरल बनाने की दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा विकसित ई परिवहन सेवा एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कोई अलग सब्सिडी योजना नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल मंच यानी कि डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हमें प्रदान कराती है, जिसके माध्यम से देश भर में परिवहन विभागों यानी कि RTO की सेवाओं को हम ऑनलाइन पारदर्शी और एकीकृत किया गया है, जिससे कि हम उन सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उठा सकें। ये पहल विशेष रूप से डिजिटल इंडिया 2015 के उद्देश्य

आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री ई परिवहन सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नागरिकों को घर बैठे परिवहन सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं, यानी कि जब आप कोई भी परिवहन सेवा की वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर आप अपना स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर आरसी रिन्यू करानी हो या और भी इस तरह की कई सारी सेवाएं जो होती हैं, ऑनलाइन चालान जमा कराना हो, ये सभी सेवाएं आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर या फिर लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर इसे खोल कर इसमें अपना जो भी अपनी सेवाएँ हैं उसका लाभ उठा सकते हैं।

आइए जानते हैं इस सेवा का मुख्य उद्देश्य। नागरिक घर बैठे परिवहन सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं। आरटीओ प्रक्रियाओं को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना इसका एक उद्देश्य है। कागजी कार्यवाही और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना, डिजिटल डेटा के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, भ्रष्टाचार और अनावश्यक विलम्ब को कम

वाहन का पंजीकरण हो, जैसे कि जिसको हम RC कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण हो, फिटनेस प्रमाण पत्र हो, परमिट हो, या हाइपोथिकेशन हो यानी कि लोन संबंधित जानकारी हो, ये सभी हमें वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि हमें ये सारी जानकारी के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कोई कार्य हो तो हम पूरा कर सकते हैं।

श्रोताओं, आपको बता दें कि जो प्रमुख सेवाएं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन या फिर नवीनीकरण, आरसी जिसकी हम बात कर चुके हैं, ई चालान का भुगतान करना हो, परमिट या फिटनेस सेवाएं अगर हमें लेनी है, फैंसी नंबर की यदि हम बुकिंग करना चाहते हैं, कई बार हमारी गाड़ियों में हम कुछ एक अलग सा नंबर चाहते हैं, उसकी बुकिंग भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है। यदि हम अपने घर के पते में या एड्रेस में कहीं कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होता है। आरटीओ कार्यालय में हमें बार बार चक्कर काटने की जाने की आवश्यकता नहीं होती और सेवाओं में तेजी और पारदर्शिता इसमें देखी जा सकती है। साथ ही साथ हमारे इस प्रयास से डिजिटल रिकॉर्ड भी कायम रह सकता है, जिससे कि कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होता है। ट्रैफिक प्रबंधन में भी ई चालान प्रणाली में सुधार किया गया है। वैसे अब देखा जाए तो यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ता है तो बस केवल ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो केवल उसका एक फ़ोटो क्लिक करके और बस रहने देती है। आप जब घर पहुंचते हैं तब तक आपके पास में मैसेज आ जाता है और उसमें चालान के लिए लिंक दे दिया जाता है कि आपने जो भी नियम तोड़ा है उसकी जानकारी होती है, पूरा चालान होता है और उसका भुगतान भी आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ई परिवहन सेवा योजना के तहत परिवहन से संबंधित जो भी सभी चीज़ें हैं वो ई माध्यम पर उपलब्ध है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र की ओर और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

श्रोताओं, कुछ ही पलों पहले हमने चर्चा की विकास चर्चा में प्रधानमंत्री ई परिवहन सेवा योजना के बारे में, और साथ ही फिल्म संगीत भी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्स पर। और अब समय है दोपहर समाचार का, जिसे हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के

0: आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल

0: डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनुश्री भैसा, राम राम।
1: राम राम रेखा भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला सगला किसान भाई बहना ने अपनो राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: देखो सा कार्यक्रम में आया हाँ, और हगला किसान भाई बहना रे वास्ते आप ही किसान री बात में लेना आया कि जो पशु शेड वे वंडो वैज्ञानिक रूप आप निर्माण किस तरह कर सका सा।
1: बिल्कुल भैसा, देखो पशु आर स्वास्थ्य स्वच्छता और बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए एक वैज्ञानिक पशु शेड रो वेणो घणो जरूरी है। एक सही तरीका वणियो तो को शेड जो है पशु आर प्रतिकूल मौसम जैसे आन की गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, अणि मचावे है और लारे लारे जो बीमारी आरो खतरा है वणियो भी कमी वेवे है।
0: बिल्कुल वैसा, देखो वनडे वास्ते आपने सब पहला स्थान रो चयन करनो है और दिशा रो चयन करनो है। जो ऊंचाई वाला शेड वेगा भी हमेशा आसपास री जमीन में 1-2 फीट ऊंचाई पे बनानो चाहे ताकि बारिश रो पानी अंदर नहीं आवे और अंदर नहीं भरावे और जल निकासी जो वेवे वो बहुत ही आसानी हुई सके सा।
1: बिल्कुल भाई साहब।

0: को आप दिशारी बात कह ही रहा, तो दिशारी बात करा तो शेड री लंबाई जो है पूर्व पश्चिम री तरफ पैणी छावे अणियों कही है कि सर्दिया में धूप महीने तक जावे और गर्मिया में सीधी धूप रो असर कम रहे, चणियों कही है कि हवारो संचार बेहतर तरीकों वे सके है।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो अंडे साथ में अगर अभी अणा शेड रे प्रकार की बात करा तो ये मुख्यतः दो तरीका रा जो वैज्ञानिक शेड है वी वे और वणी में आपने पहला तरह री बात करा तो आमने सामने वाली पद्धति अणा में पशुआ रे चेहरा जो है वी एक दूसरा री तरफ वेवे या पशुआ ने चारा खिलावा रे वास्ते बेहतर वेवेसा।
0: और दूजी पद्धति जो है वणी में आप पूंछ सु पूंछ पद्धति आप ले सका, अणी में वैज्ञानिक रूप इन्हें बेहतर माने जावे क्योंकि अणी में दूध निकालवा में आसानी वे, सफाई जल्दी वे जाए और यदि एक पशु बीमार वे तो वंडो संक्रमण जो है मुंडारे जरिए दूजे तक जल्दी नहीं पहुँचे है।
1: देखो सा अन्य लारे आपी बात करा जो फर्श रू निर्माण है वणी में बात करा ढलान री, तो फर्श पक्को और खुरदरो वेणो चावे ताकि पशु है फिसले नी और अणी में 1:40 रू ढलान वेणो चावे ताकि 40 फीट 1 फीट री ढलान जो कि नाली री तरफ वेणे चावे सा।
0: देखो नाली जो है वंडो सेड भी आप सेड में देखा कि नाली 1 फीट चौड़ी और 3-4 इंच वेणी छावे और घेरी पक्की नाली वेणी छावे जो गोबर और मूत्र जो है वन डिस्पोजल पीट या बायोगैस प्लांट तक ले जा सके।
1: देखो सा छत और आप अंडी ऊंचाई री बात करा तो शेड रे वच्चे री ऊंचाई 12 लेने 15 फीट तक और वंडे किनारा री बात करा तो 8 लेने 10 फीट तक वेणी छावे सा।
0: और अगर अणी में आप सामग्री री बात करा बैसा तो छत रे वास्ते एस्बेस्ट सीट या पचे टीन शेड रो उपयोग आप कर सका, गर्मी में बचवारे वास्ते छत रे ऊपर आप घास फूस नाकी सका, चणियो कही है कि छत रे नीचे सीलिंग बनावा रो जनु फायदेमंद रेवे है।
1: बिल्कुल वैसा अगर दाना पानी री जगह रे भी वेपी बात करा तो खुरली जो वेवे अंडी ऊंचाई जमीनू लगभग 1.5 लेने 2 फीट तक वेणी चावे, भीतरी सतह चिकनी वेणी चावे ताकि सफाई आसानी री जावे सा।
0: और पानी री बात करा तो देखो पानी री टंकी जो है पशुआ रे वास्ते हर समय साफ पानी उपलब्ध वे ऐसी टंकी वेणी चावे, अंडे वास्ते सेड रा एक कोना में स्वचालित या पक्की पानी री टंकी आपने बनावनी है।
1: बिल्कुल सा जगह री आवश्यकता री आपी बात करा तो वैज्ञानिक मानक रे अनुसार अगर आपी शेड रो निर्माण कर रहे हाँ तो आपने वणा रे अनुसार प्रति पशु खुली और ढकी तरह जगह अणी प्रकार वेणी चावे, जिस तरह की भैंस री बात करा तो ढक्यो तको क्षेत्र 40 लेने 45 और खुलो क्षेत्र 80 लेने 100 वेणो चावे, गाय री बात करा तो 30 लेने 35 ढक्यो तको जो शेड रो निर्माण है वो वर्ग फीट में वेणो चावे और खुला क्षेत्र में 70 लेने 80 वर्ग फीट वेणो चावे, जो बछड़ा है ये बछड़िया है वणा री बात करा तो 15 लेने 20 वर्ग फीट वेणो चावे अणी में और आगे जो खुला क्षेत्र री बात करा तो 30 लेने 40 फीट अणी में वेणो चावे सा।
0: सही बात है सा। और देखो अणी री महत्वपूर्ण सुझाव भी आपने किसान भाइया ने देवा कि देखो हवादार वातावरण रहना चाहे, शेड रे चारों तरफ आपने रूकड़ा लगावना है ताकि वातावरण ठंडो रहे, फर्श ने दिन में कम कम 2 बार धोवणो छावे, अणियों कही है कि स्वच्छता वणी रहे और रोशनी देखो रात रे समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी राखनी है ताकि कई पशुहारी निगरानी कर सका, कई जीव जनावर भी बटे आतो वेवे तो वणी ने आप देख सका।
1: बिल्कुल वैसा अणि वैज्ञानिक विधि निर्माण करवा पे केवल पशुहारो न की तनाव कम वेवे बल्कि दूध देवारी जो क्षमता है वणी में भी 10 लेने 20% री अगर आप वृद्धि देख सका सा।
0: बिल्कुल सा वैसा।
1: तो अनुश्री भैसा आपने तो यू ही कहना है कि पशु आरे वास्ते अगर शेड रो निर्माण कर रहे हाँ तो रू आप ही जो भी शेड बनाई रहा तो इन्हें वैज्ञानिक रूप आपने बनाणो ताकि आपने पशु स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे और आपने आय में बढ़ोतरी करतो रहे सा।
0: बिल्कुल भैसा। और देखो आय में बढ़ोतरी वेवे तो घर में खुशी रो माहौल आवे और खुशी रो माहौल आवे तो आप खुशियाँ में कटे कई करा गीत गुनगुनावा या पछे नाचा जो भी आनंद मनावा, तो देखो आनंद मनावा री बात वीरी बटे आप केवो तो बढ़िया सो गीत सुने ना अपना किसान भाई आरो आनंद बढ़ावा सा।
1: बिल्कुल सा।

0: तो देखो अनुश्री भैया यो तो हुनियो आपी मनभावन राजस्थानी गीत और देखो साहब अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और क्यों नहीं आपी बात करा सगला किसान भाई बहनों की भाई जो ताप नियंत्रण तकनीक वे वह आपी किस तरह काम में लेवा ताकि अपने पशुओं ने राहत मिले सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी रही है और आपा तो जो

0: मन खां तो ठंडो पानी की व्यवस्था कर दा, ठंडी जगह की व्यवस्था कर दा और कूलर पंखा में भी बैठ जावा, लेकिन पशु जो है वनारे वास्ते आपने ताप नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी भी जा। देखो तो पशुआरे वास्ते आप बरू सेड की बात करी रहा, तो सेड नू अगर आगे बढ़ा तो देखो पशुआरे वास्ते सेड रे महीने से आपने ताप नियंत्रण रखना है। यो घणो महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि घनी गर्मी और या पचे सर्दी रो सीधो असर अपने पशु रे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वन्य साथे साथे दूध उत्पादन पे भी पड़ी सके है।
1: देखो सा अणि में छ सबू पहला आपने ताप नियंत्रण रे वास्ते जो छत्रो प्रबंधन है वो कशो वेणो चावे ताकि आपी जो छत में जो ताप वे वो कम कम पहुँचे सा। तो अंडे वास्ते आपने छतरी मध्यरी ऊंचाई 12 लेने 15 फीट तक वेनी चावे। जनी में जो ऊंची छत वेगा तो गर्म हवा भी वतरी ऊपर वेगा और पशुहारी गर्मी भी कम लागेगा सा।
0: देखो लारे लारे पेंट तकनीक रो भी आपने काम करना है। टीन री जो छत वे वंडे ऊपरी हिस्सा ने आपा सफ़ेद चूना या रिफ्लेक्टिव पेंट उ रंगना है। जण्यू कई एक सूरज की किरणा परावर्तित वे जावे, जण्यू मईली तरफ तापमान जो है 2-4 डिग्री तक कम वे जावे है।
1: देखो सा आपी बात करा इनमें प्राकृतिक इंसुलेशन री, तो छतरे ऊपर सूखी घास या पुआल री भी आपी 3 लेने 4 इंच मोटी परत बचाई सका सा, जो कि सब प्रभावी और सस्तो तरीको भी सके सा।
0: बिल्कुल भाई साहब, देखो यह बात आप कह रहा हो तो आपने पुराना जमाना री अगर बात करा तो वंदा ने 80 स्टार्ट री ओडा वेती ही वना ओड रे माते घास फूसिस रखियो तो को वे तो जने का ये है कि आपने जो पशु वेता वना ने ठंडक मिलती ही। और अब अगर आप वायु संचार और वेंटिलेशन री बात करा तो देखो शेड रे चारों तरफ दीवारा पूरी तरह बंद नहीं वेनी चावे, कम कम 3-4 फीट ऊंची खुली जाली वेनी चावे ताकि कई ताजी हवा रो प्रवाह वणियो तो को रेवे, जिन्हें आप क्रॉस वेंटिलेशन रे नामू जाना हाँ।
1: बिल्कुल सा अंडे अंदर आपी एग्जॉस्ट पंखा वेवे वी भी लगाई सका यदि शेड आपने बड़ो है। अमोनिया जैसी गैस और गर्म हवा बाहर निकलवारे वास्ते ऊंचाई पे आपने जो एग्जॉस्ट पंखा है वी आपने लगाना चाहवे सा।
0: देखो शीतल प्रणाली की बात करें तो गर्मिया में तापमान नियंत्रण करवार वास्ते आधुनिक डेयरी फार्मा में 2 तकनीक उपयोग हुए है। फोगर सिस्टम यानी मैं पाइप रे जरिए बिल्कुल बारीक पानी री फुहारा जो है धुंध रे जैसी छोड़ी जावे या हवा में मौजूद गर्मी ने सौकिन वने ठंडो कर देवे, यानी ने कई छतरे करने आपा लगाई सका हाँ।
1: देखो सा अंडे साथ में आपी स्प्रिंकल सिस्टम री बात करा तो या सीधा पशुहारी पीठ पे पानी री बड़ी बूंदा गिरावे जो कि पंखा री हवा रे साथ में मिलने पशु रे शरीर ने भी ठंडा राखे सा।
0: देखो आपने ध्यान देना है कि फोगर रो उपयोग करता समय आपने वेंटिलेशन अच्छो वेणो चाहे, नहीं तो कई एक शेड में नमी बढ़वा पशुओं ने बेचैनी वे सके है।
1: देखो सा प्राकृतिक रूप भी आपी छाया कर सका जो कि शेड रे दक्षिण और पश्चिम दिशा में घना और ऊंचा पेड़ जिस तरह की नीम बरगद या शीशम आपी लगाई सका। ई न केवल सीधी धूप ने रोके बल्कि जो वाष्पीकरण में वे वणारे माध्यम भी आसपास री हवा ने भी ठंडा रखे सा।
0: और देखो गर्मिया में खुली खिड़कियां पे आप गीली टाट लटकाई सका, यो भी एक अच्छो प्रभावी तरीको है। लारे लारे आप फर्श और बिछावन की बात करा तो देखो गर्मिया में फर्श ने सूखो रखना जरूरी है, अगर संभव है तो आपने रबर मेट रो उपयोग करना है जो तापमान के प्रति कम संवेदनशील वेवे है।
1: देखो सा पानी रो प्रबंध भी पशुहारे वास्ते ताजा और ठंडो करनो है ताकि जो भी पशु पानी पीवे भी बीमार नहीं वेवे। हो तरीकों अगर आप ही पशु और स्वास्थ्य रो ध्यान रखांगा तो आप ही कह सका कि अपना पशु बेहतर रहेगा सा।
0: बिल्कुल सारा तकनीकारो अगर आप सही तालमेल बिठे ना अपना पशु वाली देखभाल करा तो असी तेज पड़ती गर्मी में भी आप अपना पशुधन ने बीमार वेवों मचे सका, और अगर अपना पशुधन स्वस्थ रहेला तो जीवन भी अपनो जीवन स्वस्थ रहेला ही रहेला। अगर आप दूध रो आप उद्योग करी रहा हो तो आप आगे वाला जिन्हें आप दूध बेची रहो बने रहो स्वास्थ्य रूप आप ध्यान रखी सकी रहो।
1: बिल्कुल सा वैसा या तो आप ही बात की थी जो तापमान जो ताप नियंत्रण तकनीक है विस्तर तरह आप किस तरह प्रयोग में ले सका सा। और अब कार्यक्रम में आया हाँ तो क्यों नहीं एक राजस्थान गीत और हुनाई दा सा।
0: बिल्कुल सुनावा सा।

0: ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।
1: ਤੋ ਅਨੁਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮਨ ਭਾਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗੀਤ ਔਰ ਲਾਲਾ ਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣਿਆ ਸਾ। ਅਬੇ ਆਪਣੇ ਹਗਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਬਹਿਣਾਂ ਨੇ ਯੋ ਵੀ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ ਪੌਦਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗਣਾ ਹਾਰਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਵੇਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੌਦਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਕ ਵੇਵੇ।
2: ਔਰ
1: ਦੇਖੋ ਸਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਰੀ ਆਪੀ ਸਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੋ ਇਹ ਸਭੂ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਔਰ ਆਵਸ਼ਕ ਵੇਵੇ। ਵਣੀ ਮੇਂ ਆਵੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼।
2: बिल्कुल भाई साहब, देखो पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व है जो पौधा की वृद्धि, विकास, उत्पादन और जीवन क्रियावार वास्ते आवश्यक वे वे। आप बताइए जो प्राथमिक पोषक तत्व है वे कई वही सके। अगर आप द्वितीय पोषक तत्व की बात करा तो देखो आने में कैल्शियम आई सके, मैग्नीशियम आई सके और सल्फर आप इन्हें ले सका। हाँ
1: बिल्कुल भाई साहब, और अंडे साथ में आप ही बतावा कि जो सूक्ष्म या तृतीय पोषक तत्व रो नाम आप ही जिन्हें देवा वणी में आप ही लोहा ले सका, जिंक ले सका, मैग्नीज ले सका और कॉपर भी आप ही अंडे अंतर्गत रख सका। लारे लारे आप ही बोरोन जो मोटिवेशन है और क्रोनोटीन है और निकेल है, ये सब भी जो तृतीय पोषक तत्व है वंडे अंतर्गत आवे सा।
2: बिल्कुल, और देखो दूजा भी पोषक तत्व वे वे प्राकृतिक स्रोत आपने मिले, ये खाद्य रूप में नहीं दे सका पर ये प्रकृति वाणा आपने पौधा ने मिले है, ये वे वे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पोषक तत्व है देखो आपने पौधा ने दे सका। और अगर पोषक तत्व आपने पौधा ने दे रहा तो आना पोषक तत्वारो लाभ कई है यो आप बतावा। देखो बेहतर वृद्धि और विकास वे वे, अधिक उत्पादन और गुणवत्ता मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि वे वे और जलवायु तनाव सहनशीलता आना में मिल जावे और मिट्टी की उर्वरकता भी ये बनाया रखे है।
1: बिल्कुल साहब, ऐसा देखो जो भी आप फसल ले रहा वनार में अगर आप टाइम टाइम पे सुरक्षित रूप जो भी पोषक तत्व है अगर भी टाइम पे देता रहेगा तो आपने जो भी फसल ले वा बढ़िया वेगा सा।
2: बिल्कुल भाई साहब, कुल मिले ना पा यो कह सका कि सही पोषण, स्वस्थ पौधो, समृद्ध किसान और समृद्ध भारत।
1: बिल्कुल भाई साहब, और देखो साहब एक कार्यक्रम में आया हाँ तो क्यों नहीं देखो, या तो आप ही बात की दी पोषक तत्व री और आपको तो चलता चलता एक किसान भाई बनना ने और राजस्थान गीत होना ही था सा।
2: बिल्कुल।

तो अनुश्री बिसाई हो तो हुणियो मन भवन राजस्थानी गीत और अबे आपने कार्यक्रम रो भी टाइम वीरो है अणी कार्यक्रम आपने सगला किसान भाई बहनों भी आपी विदा लेवा तो चाला सा राम राम, राम, राम सा, सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है समाचारों का। आइए लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, जहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार।

0: कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, किसी अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुरेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र की कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 3:05 हुए हैं और अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम को 5 बजे हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बज रहे हैं। शुरू करते हैं आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण। सबसे पहले हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्ते सलाम साथियों, फिर से हाजिर हैं हम आपका मनपसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेके। आज आपको काफ़ी सारी बातें बताएंगे, लोगों और कुछ यंग आइडल से भी मिलवाएंगे और फिर कुछ शहरों के सफ़र पे ले चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बिना समय गवाए। मैं हूँ साहिल और आज मेरे साथ हैं,
1: निकिता,
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं यंग पैरा एथलीट, फिटनेस ट्रेनर, ट्रिप प्लानर और ट्रैकर मनीष सिंह चौहान की मनोज कुमार अम्बरीश से बातचीत।
2: कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है पैरा कबड्डी प्लेयर और जिम इंस्ट्रक्टर और अब तो वो ट्रिप प्लानर और ट्रैकर भी हो चुके हैं, मिस्टर मनीष सिंह चौहान। मनीष सिंह, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच
2: मनीष जी, पिछली बार हम जनवरी में मिले थे,
3: जी सर।
2: उस समय आपने नेशनल लेवल की चैंपियनशिप खेली थी,
3: जी।
2: उससे लेके अब तक आपने और कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं और उसमें आपका क्या प्रदर्शन रहा है?
3: सर अभी हमारा फेडरेशन कप था, जैसे मैंने पहली बार बताया था कि जो भी टीम नेशनल में पार्टिसिपेट करती है और वो क्वार्टर फाइनल तक आती है, वो 8 टीमें का फेडरेशन कप होता है। तो वो फेडरेशन कप मेरठ में हुआ था और हमारी वहाँ पर सेकंड पोजीशन लगी थी।
2: अच्छा
3: जी,
2: सेकंड।
3: और उसमें बेस्ट टूर्नामेंट का अवार्ड, प्लेयर जो बेस्ट टूर्नामेंट प्लेयर रहता है वो मेरे को मिला था।
2: फिर से आपको मिल गया पिछली बार की तरह?
3: पिछली बार बेस्ट रहता था, इस बार बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट का मिला,
2: पूरे टूर्नामेंट का मिला के बेस्ट प्लेयर। आप पैरा कबड्डी खेलते हैं
3: जी,
2: पैरा कबड्डी अभी तक नेशनल लेवल पे ही है
3: जी, अभी नेशनल,
2: तो उसके इंटरनेशनल लेवल पे जाने के चांसेस अभी क्या है? मतलब
3: सर,
2: सपोज हम स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स से
3: जी। पहली बात तो ये कि ये स्टार्ट अभी दूसरा या तीसरा साल ही हुआ है इसको, तो किसी भी गेम को बनाने के लिए उसका एक बेस्ट लेवल तैयार होना चाहिए। तो जैसे अपने इंडिया की टीम तैयार होगी तो वैसे दूसरे जो एशिया में जो है टीम कंट्री है उनकी टीम भी तैयार होगी। तो जब ये पूरा इनिशियल लेवल पे सारी चीज़ें होने लग जाएगी, तो अभी अपकमिंग डाला है एशियन गेम होने वाले हैं, तो वो जब उसकी डेट अनाउंस होगी तो धीरे धीरे सब चीज़ होगा। बट कुछ भी अभी ऐसा फाइनलाइज नहीं है कि इस डेट को या इस ईयर में ये एशियन कप होंगे।
2: अच्छा।
3: अभी ये शायद तक मेरे हिसाब से जो चीज़ चल रही, जहाँ तक मैं प्लेयर हूँ मुझे समझ में आ रहा है, ये अपना एक डाटा तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर नेशनल, सेकंड ईयर नेशनल, जैसे हमने थर्ड नेशनल खेला था, फिर एशियन फेडरेशन कप हुए, तो अब जाके आप स्टेट भी होने लगेंगे, जैसे दूसरे टूर्नामेंट्स में होते हैं ना, स्टेट होते हैं, जिले के होते हैं, तो वो सब भी होने लगे। फिर इनका एक सब प्लेयर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना भी पड़ता है ना इनको कितना वो सब चीज़ है, फिर एशियन गेम्स होंगे। तो इस तरीके से
2: तो अभी पैरा गेम्स एशियन में, अभी और कोई कंट्री इसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं है?
3: हाँ देखिए, अब मैं

0: अपन तो इंडिया में है ना, तो
1: हाँ
0: अपन को ये नहीं पता कि किस कंट्री में हो रहा है नहीं हो रहा है, पर ये है कि अपकमिंग उनकी जो वेबसाइट है, जैसे पेरा कबड्डी इसकी जो वेबसाइट है उस पे अपकमिंग लिखा हुआ आ गया, अगर कोई देखेगा खोल के तो एशियंस गेम का अपकमिंग आ गया।
1: मतलब फ्यूचर में चांस है कि ये
0: हाँ,
1: पैरा गेम्स एशियन गेम्स में इंक्लूड हो
0: जी जी जी
1: जाएंगे और
0: अब
1: फिर धीरे धीरे करके पैरालंपिक्स में
0: जी
1: भी।
0: जी जी स्टार्ट हो गया, तो मतलब बहुत आगे तक लेवल है, क्योंकि कबड्डी आप सभी को पता है कबड्डी एक बहुत बड़ा वैसे ही गेम है,
1: वैसे ही
0: अगर
1: गेम है। हाँ बिल्कुल, हम तो वर्ल्ड चैंपियन है ही
0: हाँ
1: कबड्डी में।
0: तो वैसे ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी।
1: मनीष जी, आप फिटनेस कोच तो है ही,
0: जी
1: अब जिस तरह से मौसम बदल रहा है, यूथ का खान पीन बहुत अलग हो चुका है, और
0: जी
1: इस तरह से इस वजह से उनकी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी काफ़ी चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पा रही खाने के हिसाब से। तो आपका क्या, आपकी क्या सलाह है कि एक यूथ के इसमें
0: जी
1: गर्मी के मौसम में उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो।
0: हाँ भैया, देखिए इसको इस तरीके से बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि अपने यहाँ जो मौसम चेंज होते हैं
1: जी
0: उससे पहले क्या होता है ना। जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको पता है कि हर धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे अपन हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर नवरात्र आते हैं,
1: बिल्कुल
0: मतलब फास्टिंग होती है, 9 दिन की फास्टिंग होती है।
1: हाँ
0: ठीक है, अब फास्टिंग के मतलब ये होता है कि प्रॉपर फास्ट, आपको लाइट फूड खाना है और मौसम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज़ें जो चेंज होगी, अब जो मौसम में आने वाली वो चीज़ आपको यूज़ करनी है। तो जो 9 दिन या 8 दिन जो भी व्रत रखते हैं या फास्ट रखता है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी अडोप्ट करती है, फिर मौसम चेंज हो जाता है, फिर उसका फूड चेंज होता है। पर अब क्या होता है, फास्ट अपना बिल्कुल अपन ने क्या कर दिया, फास्टिंग के नाम पे भी अपन क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या
1: बिल्कुल।
0: ऑयल वाली चीज़ें खाएंगे, या फास्ट के नाम पर अपन बहुत ज़्यादा खाने लग जाए।
1: अच्छा, फास्ट के नाम पे भी ये ऐसे सारे आइटम कि आपकी फास्ट चौड़ा, फास्ट भेल,
0: जी जी जी
1: उपवास में ये
0: जी जी
1: फिर वही खाते रहेंगे तो फिर फास्टिंग किस काम की
0: फास्टिंग
1: है।
0: नहीं है वो, फास्टिंग नहीं है वो, उनका अपना मन रखने के लिए बस रख रहे हैं।
1: रखने के लिए
0: फास्टिंग मतलब आपको लिक्विड चीज़ें खानी है।
1: लिक्विड चीज़ अपनी बॉडी प्रिपेयर करती है फास्टिंग के। अब गर्मी के मौसम में फिर इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे बॉडी को।
0: गर्मी से पहले भी तो अभी तो, अभी जब गर्मी आने वाली थी जब
1: हाँ
0: भी तो अपने नौरते आए थे ना,
1: हाँ
0: है ना, 2 तरह के नौरते आते हैं है ना। ठीक है, तो
1: बिल्कुल
0: ये हर मौसम के टाइम पे आता है। अब सपोज गर्मी आई तो आप कह रहे हैं क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले बॉडी का हाइड्रेट रखनी है।
1: हाँ
0: अब हाइड्रेट वाले फूड भी आते हैं, आपने देखा होगा जैसे गर्मी तो अपने मौसम के हिसाब से फूड आते हैं,
1: हाँ
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तरबूज आता है, खरबूज आते हैं और अपने आम आता है। तो आप जितनी फल फूड अपनी डाइट में होंगे, ठीक है, आप बटर छाछ पी सकते हैं, ठीक है, बटर मिल्क ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट को फुलफिल करने के लिए और बॉडी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। नींबू पानी पी सकते हैं, पर अपन करते क्या है, अपन ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में अपन ने डाल दिया, लोगों को युग की बात करी आपने तो वो शायद कोल्ड ड्रिंक पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उनको सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा है ना आते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत इजीली मिल जाती है और
1: मुझे
0: जो
1: तो
0: हाँ और टेस्ट लगे,
1: टेस्ट लगे
0: है ना, उसकी चक्कर में
1: और
0: अपनी
1: थोड़ा
0: हेल्थ को अपनी
1: स्टाइलिश लगे
0: स्टाइलिश लगे।
1: ताकि वो सोशल मीडिया पे दिखा सके। हाँ
0: और अब फैमिली का भी ऐसा ही हो गया है, अभी आप देखा जाए तो अगर अपने इंडियन में, इंडियन फूड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, प्रोटीन की है। और लोगों को लगता है क्या, प्रोटीन के नाम पे डब्बा, उनको लगता है कि प्रोटीन पाउडर ही लेना पड़ेगा, नहीं, आप जो भी चीज़ खा रहे हो ना उसमें किसी ना किसी चीज़ की तरीके से फॉर्म में प्रोटीन है, पर किसी फॉर्म किसी चीज़ में नहीं है। तो इंडियन इसीलिए ही पीछे है, स्पोर्ट्स में देख लो, हर चीज़ में देख लो, क्यों पीछे है, क्योंकि अपने इंडियन फूड जो है उसमें प्रोटीन की कमी है, ज़्यादातर तो वेजिटेरियन है ना।
1: बिल्कुल
0: अब वेजिटेरियन में काफ़ ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। और
1: बिल्कुल
0: दूसरा अपने फैमिली में या कहीं पे भी आप देख लो, आपके समाज में देख लीजिए, आप जैसे ही प्रोटीन का नाम बोलोगे लोगों को डर लग जाता है, अरे प्रोटीन से तो किडनी लिवर खराब हो जाते हैं, पर आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी का जो हर पूरी काम कर रही है वो आपके प्रोटीन से ही चलता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। अगर किसी इंसान को नॉर्मल प्रोटीन भी चाहिए तो वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता, सपोज मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता हूँ तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, अगर मेरा 50 किलो वेट है तो मुझे 50 ग्राम एटलीस्ट पर डे चाहिए। अगर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, सपोज कुछ योगा कर रहा हूँ, कुछ भी जिम में कर रहा हूँ, कुछ भी नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे 1.2 × 2 माई वेट, मतलब एटलीस्ट मेरे को 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर मैं 50 किलो का हूँ तो। फिर ये धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी लेवल जैसे बढ़ता है वैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है बॉडी की। ऐसे ही कार्ब्स होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, है ना। अब इतनी चीज़ें नहीं है अपनी, अच्छी चीज़ें नहीं है यूँ समझ लीजिए आप, भले उसको अपनी सब्जियों को लेके देख लीजिए, घर का अनाज देख लीजिए, घर का आटा देख लीजिए या हवाई देख लीजिए, कोई
1: हवाई
0: भी चीज़ें
1: वो जो
0: प्योर
1: शुद्ध
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: कोई भी चीज़ें प्योर नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बॉडी ऑटोमेटिकली अनहेल्दी होती जा रही है। अब हेल्दी करने के लिए ऑप्शन क्या है, कम से कम चीज़ें,
1: सप्लीमेंट्स लो करो।
0: है ना, सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स भी जो आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट हो,
1: हाँ।

0: अब कहा जाता है कि बादाम खाने से अपनी याददाश्त
1: तेज हो जाती है,
0: तेज हो जाती है ना। अब कब कितने बादाम खाने चाहिए, कितने समय तक खाने चाहिए,
1: क्योंकि ज्यादा खाली तो गर्म करते हैं वो,
0: है ना, ये तो किसी ने बताया नहीं। और क्या 5 दिन में बादाम खाऊंगा मेरी याददाश्त अच्छी हो जाएगी? नहीं। अगर सपोज मैं आज 20 साल का हूं और मैं रेगुलर वो जो 5 बादाम का अगर मैं उसको शेड्यूल रोज रात को गलाऊं और सुबह खाऊं, मैं जब तक फिट रहना चाहता हूं 10 साल 20 साल, तब जाके उसका मेरे को कुछ 5% 10% बेनिफिट मिलेगा।
1: अच्छा, उसका रिजल्ट दिखने में इतना टाइम लगेगा,
0: है ना। कोई भी चीज़ ऐसी होती है वो इतने लंबे समय में देती है।

0: आजकल ट्रेंड भी तो है इंस्टेंट, सारी चीजें,
1: हाँ
0: फूड भी तो इंस्टेंट आ गया, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं, उतना आलस आ गया कि गर्म पानी डालो उनको वही चाहिए, भले
1: जी
0: उसमें कुछ हो ना
1: कुछ
0: हो।
1: होना हो
0: अच्छा मनीष जी, हमने आपका सोशल मीडिया पेज देखा था,
1: जी।
0: आपने रिसेंटली एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी।
1: हाँ सर, जो उदयपुर से भारतीय उसकी बात कर रहे हैं।
0: हाँ, उदयपुर के ट्रिप की बात करें,
1: जी
0: जिसमें
1: जी
0: आपके एज ग्रुप में सोशल के बुजुर्ग तक
1: जी जी उसमें हमने हिमाचल का किया
0: थे।
1: था, जो
0: हाँ
1: सुरजा
0: वही,
1: जीबी रघुपुर फोर्ट आपने सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है और कम लोग गए हुए हैं अभी तक वहाँ पर, है ना। तो
0: ओके, अनएक्सप्लोर टाइप है
1: हाँ
0: वो।
1: मतलब एक्सप्लोर तो है पर इतनी भीड़ भड़क का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी चीज़ें आपको इजी टू यूज़ नहीं मिलती है।
0: अच्छा,
1: पहाड़ है, नदियाँ है
0: मतलब
1: ना।
0: वहाँ फैसिलिटीज कम है इसलिए लोग नहीं जाना चाहते हैं।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: तो हमने उसको टूर को प्लान किया था हम, मेरी जैसे आपको
0: तो
1: पता
0: इसका
1: है
0: आइडिया कहाँ
1: कि
0: से है आपको?
1: मेरे को घूमने का शौक है ना, चीज़ें एक्सप्लोर
0: अच्छा।
1: करने का शौक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अपन अपना काम धंधा छोड़ के चले जाए बार बार। तो अपने क्या सोचा कि यार अपन जहाँ पर है क्या पता उन्हीं लोगों को बोलते हैं और वो लोग आ जाए तो और अच्छा है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो हमने प्लान किया था, हमने अपनी जिम है जैसा आपको पता है वो सबको अनाउंस किया था, और हम गए थे यहाँ से टोटल 40, दो टेम्पू ट्रैवल करे थे हमने यहाँ से दिल्ली से।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो बाय रोड ही लेके गए आप सबको? हाँ
1: यहाँ से ट्रेन दिल्ली और
0: ओके,
1: फिर दिल्ली से
0: दिल्ली से
1: हिमाचल।
0: वहां तक
1: हाँ
0: पूरा 5
1: ठीक है। उसमें 5 साल से लेकर 60 ईयर्स तक के लोग थे। हाँ
0: साल से लेके 60 ईयर्स तक।
1: आप समझ लीजिए उनकी हेल्थ किस लेवल पे होगी, उन्होंने क्या डिसीजन लिए होंगे। और वहाँ पर नॉर्मल घूमने नहीं था, ट्रैकिंग भी था। रघुपुर फोर्ट करके ट्रैक है जहाँ पर ये जवानी दीवानी की शूटिंग हुई थी, आप देखेंगे तो, है
0: अच्छा।
1: ना। और वो वहाँ पर हर तरीके का मौसम मिलेगा आपको, है ना। आपको बर्फ़ भी मिलेगी, बारिश भी मिलेगी, ठीक है। जो अपने मनाली ओरी वाले सारे पहाड़ है बर्फ़ के, वो पहाड़ भी दिखेंगे, मतलब बहुत अच्छा है। और वो 12,000 फीट के ऊपर है।
0: तो वहां तो ऑक्सीजन की कमी काफी होगी,
1: हाँ
0: तो
1: ऑक्सीजन मतलब
0: ऐसे में
1: कम।
0: बुजुर्गों को परेशानी नहीं हुई?
1: देखिए जो 60 ईयर्स के जो दो कपल थे ना लास्ट, जिनकी सबसे ज़्यादा एज थी, वो एक्चुअल में इतने फिट नहीं थे। और मैंने एक दिन पहले ब्रीफिंग करी थी, जब हमारा जिस दिन जाना था कैंप उससे एक दिन पहले रात को ब्रीफिंग करी थी कि वो इतनी हाइट पे है, ठंड भी रहेगी, माइनस में जाता है टेम्परेचर, बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। नेचर किसी को पता नहीं होता नेचर कब बदल जाता
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको लगता है कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, ठंड ज़्यादा लगेगी, कपड़े हमारे पास वैसे नहीं है, तो आप यहाँ पर होटल में एक दिन और स्टे कर सकते हो। फिर भी उन्होंने नहीं, उनके जो साथ वाले ने बोला था आप चलोगे अपन सब साथ में चलेंगे, आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर वो आए, मेरा काम था बताना, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो उनको लगेगा कि हमें बताया नहीं था। फिर वहां पर आया, मैंने उनको एक चीज़ लाइन बोली थी लास्ट में जब वो ब्रीफिंग खत्म होने की, अगर आप आओगे, अगर आप करना चाहते हो तो मैं मेरा 100% नहीं 200% दूंगा, आपको पूरा ऊपर तक ले जाऊंगा,
0: सही
1: है
0: सलामत।
1: ना, सही सलामत, बस आपको हिम्मत दिखानी है। वो आए लेडी और उनके हस्बैंड भी थे, उनकी एक बच्ची भी थी। तो मैंने उनको लास्ट, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया ट्रैक चलना, उन्होंने बोल दिया मनीष मेरे से नहीं होगा, है ना। और मैंने उनको एक लाइन बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको जो जा रहा है आगे जाने दीजिए, सपोज उनको 3 घंटे लग रहे चढ़ने में, अपन को सुबह चढ़ रहे हैं स्टार्ट, शाम को पहुँचेंगे, अपन को वहाँ जाके कुछ खाना तो नहीं बनाना है, कुछ काम तो नहीं है, अपन को वहाँ जाके रेस्ट करना है। 5 कदम चलेंगे बैठेंगे, 5 कदम चलेंगे बैठेंगे, धीरे धीरे
0: लेकिन पूरा करेंगे
1: पूरा
0: हम।
1: करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपको लेके ऊपर जाना है। और लास्ट में मैं ऊपर उनको लेके गया था, और उन मैम को बहुत खुशी हुई, उन मैम को बहुत खुशी हुई, उन्होंने जो हाँ महसूस किया ना, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, पर उनको बहुत मज़ा आया ऊपर जाने के बाद। और लास्ट में मेरे को बोला कि मैं ये सब चीज़ें मिस कर देती अगर मैं ऊपर नहीं आती।
0: तो वहां आपने जब ट्रैक किया तो कैंपिंग भी की,
1: कैंपिंग भी करी थी
0: तो ये उदयपुर वालों के लिए तो फर्स्ट टाइम, मतलब एक रेयर एक्सपीरियंस होता है कैंपिंग वगैरह।
1: हाँ, क्योंकि अभी तक सपोज आप भी कहीं घूमने जाते होंगे तो आप कैंप
0: होटल
1: साइड
0: में
1: नहीं
0: स्टे
1: जाता, मैं
0: करते
1: होटल
0: हैं।
1: में स्टे करता हूँ, कैंप
0: हाँ,
1: में बिल्कुल सारी चीज़ें अलग हो जाती है
0: बहुत
1: ना।
0: सारी चीजें, सबसे पहले तो जंगली जानवरों का डर रहता है।
1: हाँ वो तो सपोज जो वहाँ पर जो लोग कैंपिंग कराते हैं उनका सब चीज़ का सेफ्टी रहता है, पर आप जंगल में कुछ कह नहीं सकते हो कौन
0: हाँ
1: जानवर आएगा क्या आएगा,
0: बिल्कुल।
1: सब वहाँ ना लाइटें हैं ना कुछ है।
0: अच्छा, इसके बाद आपने एक ट्रैक भी किया था, ट्रैकिंग
1: जी
0: भी ऑर्गेनाइज की
1: जी जी
0: थी,
1: जी
0: उसका आइडिया और उसकी जगह आपने कैसे डिसाइड की?
1: जैसे उदयपुर में आपने देखा होंगे आसपास सब तरफ पहाड़ है,
0: बिल्कुल।
1: नदियां है ना,
0: हाँ
1: और बहुत सारी ऐसी जगह है जो लोग आते हैं घूमने पर, उदयपुर में लोगों को पता नहीं है कि घूमने की जगह है। तो हम ऐसे हर संडे या मंथ में एक जो 2 बार हम ट्रैक करना, मेरे को पसंद है बहुत टाइम से, तो हम ऐसे जाते रहते हैं। और मुझे जहाँ लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर दूसरों लोगों को भी लाता हूँ, ये सेफ सेफ जगह है, तो उनको भी लेके जाते हैं वहाँ पर। तो अभी हम ट्रैक पर गए थे और 25 से 30 लोग हमारी जिम से थे, बाकी के उदयपुर के आसपास के सब 2-3 जने और मेरे दोस्त हैं वो भी कैंपिंग कराते हैं, तो हम टोटल 100 पीपल्स हो गए थे वहाँ पर।
0: 100 लोग हो गए थे।

0: तो आपने वहाँ स्टे वगैरह किया था कि
1: नहीं, स्टे नहीं, सिर्फ ट्रैक ले जाते हैं, थोड़ा सा कुछ भी स्नैक्स और ये का खिला के वापस आ जाते हैं।
0: अच्छा, जब ट्रैकिंग के लिए आप लेके जाते हो 100 लोगों के आसपास, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो कुछ खास प्रिकॉशंस, मतलब क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जानी, कौन सी दवाइयाँ रखनी है, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी रहती हैं इस टाइम पे।
1: देखिए, मेडिकल किट तो जो नॉर्मल होता है वो तो पास में,
0: फर्स्ट एड किट जो रहता है, ठीक है,
1: ठीक है। फिर उसके बाद सपोज ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है चढ़ने में दिक्कत, हम उनको बोलते हैं कि आप अच्छे ट्रैकिंग शूज़ रखिए या स्पोर्ट्स शूज़ रखिए जिससे आप अच्छे से चल सके,
0: ठीक है, जिसमें ग्रिप मिले,
1: है ना। दूसरा, अगर सपोज आपको कोई इंजरी है या BPVP की परेशानी है या कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो आप पहले ही बता दीजिए। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम किसी को नहीं अलाउ कर सकते हैं, जैसे सपोज़ कहीं ज़्यादा पानी है तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि आप पानी है वहाँ पर आपको अलाउ नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी रिस्क पे जा सकते हैं। पहली बात तो हम जब भी ट्रैक स्टार्ट करते हैं या मतलब कोई प्लान करते हैं या कहीं हम किसी को ले जाने के लिए बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान ना आ जाए या ऐसी जगह हम ना डिसाइड कर लें जिससे लोग परेशान हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ही कराया जाता है,
0: कोई हादसा ना हो जाए किसी के साथ। अच्छा मनीष जी, आप पिछली बार जनवरी में आए थे, है ना, वो आपका शायद फर्स्ट टाइम था।
1: जी जी जी,
0: हमारा जो आकाशवाणी है 90 साल पूर्ण करने जा रहा है जिम में, आपका जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था स्टूडियो का वो कैसा था?
1: पहले मैं आया था जब मुझे वैसे इंटरव्यू तो बहुत सारे हुए पर आकाशवाणी में मेरा पहली बार था और मुझे ऐसा लगा था कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे बात होगी और कैसे क्या होगा। और फर्स्ट टाइम में रियल में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और भाई आप लोगों ने जो आपकी टीम ने जो पूरा सपोर्ट किया।
0: और फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर आजू बाजू के रिएक्शंस अड़ोस पड़ोस के?
1: मैंने मेरी फैमिली में शेयर किया था आपका और सबको बताया था कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है, तो सब एक तो बहुत खुश हो गए थे कि यार आकाशवाणी में इंटरव्यू आने वाला, क्योंकि आकाशवाणी बहुत बड़ा नाम है, तो बहुत सारा अप्रिशिएट मिला, उस सबने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था।
0: यस, तो दोस्तों ये थे अपने मनीष जी, पैरा कबड्डी प्लेयर, ट्रैकर, ट्रिप एडवाइज़र और फिटनेस कोच। इनसे हमने आज काफ़ी सारी बातें की और साथ ही साथ 90 वर्ष के उपलक्ष्य में इनके विचार और अनुभव भी साझा किए। तो धन्यवाद मनीष जी, आप आए दोबारा से हमारे स्टूडियो में आए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए, उसके लिए थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे यंग पैरा एथलीट, फिटनेस ट्रेनर, ट्रिप प्लानर और ट्रैकर मनीष सिंह चौहान की मनोज कुमार अम्बेश से बातचीत।

0: में हम बात कर रहे हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा की, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है।
1: बिल्कुल, कोहिमा हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शांत शहर है, जहाँ का मौसम और वातावरण लोगों को बहुत आकर्षित करता है।
0: यहाँ का कोहिमा वॉर सिमेट्री जो है द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाता है, और इसे बहुत ही सम्मान के साथ संरक्षित किया गया है।
1: साथ ही हर साल मनाया जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, नृत्य और संगीत की बेहद खूबसूरती को प्रस्तुत करता है।
0: साथियों, कोहिमा जो है एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए भी एक बेहतरीन जगह है, जहाँ ट्रैकिंग और साइट सीइंग की कई विकल्प मिलते हैं।
1: और यही कारण है कि कोहिमा सिर्फ एक राजधानी नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हर टूरिस्ट को स्पेशल यादें देता है।
0: तो साथियों, अब चलते हैं नागालैंड के एक सबसे बड़े और व्यावसायिक शहर दीमापुर की ओर, जो राज्य का प्रमुख प्रवेश द्वार भी माना जाता है।
1: जी हाँ, दीमापुर में नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है, जिससे यह शहर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
0: साथ ही साथ यहाँ के कचारी रियूंस जो है वो प्राचीन इतिहास की झलक दिखाते हैं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र भी है।
1: इसके अलावा दीमापुर के लोकल मार्केट्स और स्ट्रीट फूड भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जहां आपकी स्थानीय स्वाद का अनुभव मिलता है।
0: दीमापुर आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा संगम है साथियों, जहां तेजी से विकास भी हो रहा है,
1: और यही इसे नागालैंड का सबसे जीवंत और व्यस्त शहर बनाता है।
0: साथियों, आगे चलते हैं एक नागालैंड के शांत और कम प्रसिद्ध जिले लोंगलैंग की, जो अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
1: जी हाँ, लोंगलैंग भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको प्रकृति के करीब रहने का असली अनुभव मिलता है।
0: यहाँ की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं जो हैं बेहद समृद्ध हैं, और लोग अपनी परंपराओं के लिए आज भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं।
1: और साथ ही दोस्तों, यहाँ के पहाड़ी दृश्य और हरियाली इसे एक शांत और मुख्य और सुकून भरा पर्यटन स्थल बनाते हैं।
0: लोंगलैंग उन लोगों के लिए खास है जो शांति, संस्कृति और प्रकृति का एक मेल साथ देखना चाहते हैं।
1: जी हाँ, और यही इसे नागालैंड के छिपे हुए रत्नों में से एक बनाता है।
0: तो साथियों, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक गीत।

0: तो साथियों, अभी हमने बात की नागालैंड के कुछ खूबसूरत शहर कोहिमा, दिमापुर और लोंगलैंग की, जहाँ प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिला।
1: बिल्कुल, और अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जहाँ हम बात करेंगे आज के प्रेरणादायक युवाओं की।
0: तो साथियों, आज के सेगमेंट आज के युवा में हम बात कर रहे हैं टेनेट आदित्य की, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि उन्होंने बनाना लीफ टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी है, और जिससे नेचुरल लीफ की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है और उससे डिस्पोजेबल्स यानी कि कप, प्लेट और चम्मच जैसे बनाए जा सकते हैं।
1: जी हाँ, टेनेट आदित्य का सफ़र हमें यह सिखाता है कि अगर लगन और फोकस हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता।
0: उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं।
1: और उनकी कहानी हमें यह भी दिखाती कि आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखता है।
0: साथियों, बात करते हैं रेम्या जोशी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाला है और उन्होंने बनाई भी है पैरों द्वारा पैडल से चलने वाली वॉशिंग मशीन। उनका उद्देश्य था कि बिना बिजली से चलने वाली मशीन बनाई जाए जिससे मेहनत बचे और कसरत भी बढ़े। उन्होंने मशीन जो है पुरानी साइकिल के टुकड़ों से बनाई थी।
1: जी हाँ, रेम्या जोशी की उपलब्धियाँ यह साबित करती कि अगर इरादे मजबूत हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।
0: उन्होंने अपने काम के माध्यम से न केवल सफलता पाई है बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, और इसी के लिए उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से नेशनल अवार्ड भी मिला है।
1: और दोस्तों, आज के युवा की यही असली पहचान है खुद आगे बढ़ना और दूसरों को भी साथ लेकर चलना।

0: तो साथियों, इस गाने से पहले हमने आज के युवा सेगमेंट में देखा कि कैसे नई पीढ़ी अपने सपनों को हकीकत में बदल रही है।
1: बिल्कुल। और अब समय है एक ऐसे सेगमेंट का जहां हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और भविष्यवादी प्रोजेक्ट्स की।
0: तो साथियों, आज के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं NEOM प्रोजेक्ट्स की, जो कि सऊदी

0: में बनाया जा रहा है और यह एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
1: जी हाँ, नियोम को भविष्य का शहर माना जा रहा है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीक और सस्टेनेबल जीवन शैली का अनोखा मेल देखने को मिलेगा।
0: इस प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा है द लाइन, जो एक सीधी रेखा में बना शहर होगा जहां गाड़ियां नहीं होंगी और सब कुछ पैदल दूरी पर होगा।
1: और साथ ही यह शहर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचेगा।
0: साथियों, नियोम का जो उद्देश्य है वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नेचर साथ साथ विकसित हों।
1: और यही इसे दुनिया के सबसे अनोखे और भविष्यवादी प्रोजेक्ट्स में शामिल करता है।
0: इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा।
1: और शायद यह वही दिशा है जहां पूरी दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।

0: साथियों, बात करते हैं कुछ खास लोगों की कार्यक्रम में और जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं तलत महमूद की, जो हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और अभिनेता थे।
1: जी हाँ, उनकी मखमली आवाज़ ने उन्हें किंग ऑफ गज़ल्स के रूप में खास पहचान दिलाई।
0: उन्हें पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया है
1: और आज भी उनके गीत संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं।
0: अब बात करते हैं भाऊराव पाटिल की, जो एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे।
1: जी हाँ, उन्होंने अर्न एंड लर्न योजना के माध्यम से शिक्षा को आम लोगों तक पहुँचाया।
0: उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और उनका योगदान आज भी शिक्षा क्षेत्र में याद किया जाता है।
1: उनकी सोच ने समाज में शिक्षा के महत्व को नई दिशा दी।
0: अब बात करते हैं ग्लेंडा जैक्सन की, जो एक प्रसिद्ध जो ब्रिटिश अभिनेत्री और राजनेता थी। उन्होंने अपने अभिनय के लिए 2 अकादमी अवार्ड भी जीते हैं और इसके अलावा उन्हें गोल्डन ग्लोब और एमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
1: इसी के साथ दोस्तों, आज ही के दिन 1540 में महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
0: और साथ ही साथ आज ही के दिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद 9 मई को रशिया में विक्ट्री डे मनाया गया।
1: और 2012 में प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की कला को दुनिया भर में खास पहचान मिली और उन्हें मॉडर्न आर्ट का बड़ा नाम माना गया।
0: और आज ही के दिन 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था ताजमहल। आज के दिन बनकर जो है ये पूरा हुआ था।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिसने सिर्फ अपनी सादगी और टैलेंट से लाखों दिलों में जगह बनाई। एक ऐसी स्टार जिसकी मुस्कान में अपनापन है, डांस में जादू और एक्टिंग में सच्चाई है। जी हाँ, आप सभी समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं साई पल्लवी की।
1: जी हाँ, साई पल्लवी का बर्थ आज ही के दिन 1992 को कोयम्बटूर में हुआ था। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक ट्रेंड डॉक्टर भी है, लेकिन उनका पैशन था डांस और एक्टिंग।
0: उनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो प्रेमम फिल्म बनी, और इस फिल्म की उनकी जो सिंपल और नेचुरल एक्टिंग थी वो लोगों का दिल जीत गई।
1: और फिर आया उनका सुपरहिट गाना राउडी बेबी। उनके डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस इतने फेमस हुए कि पूरा इंटरनेट उनका फैन बन गया।
0: साथियों, साई पल्लवी को अपने शानदार अभिनय और डांस के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। प्रेमम के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू, फिदा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड, स्टीमा अवार्ड, एशिया नेट फिल्म अवार्ड्स मिले, और फिल्म लव स्टोरी में भी उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया था।
1: दोस्तों, साई पल्लवी की सबसे खास बात यह है कि वो हमेशा नेचुरल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देती है। उन्होंने फेयरनेस क्रीम के एड्स तक रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि वो लोगों को खुद से प्यार करना सिखाती है।
0: बिल्कुल निकिता, वो कहते हैं ना कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान की सोच और व्यवहार में होती है, और साई पल्लवी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।
1: और साथ ही साथ आज किसी और का भी जन्मदिन है, विजय देवराकोंडा। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये नाम आज साउथ सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में लिया जाता है, लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। विजय ने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल्स से की थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक्टिंग और कॉन्फिडेंस के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली।
0: बिल्कुल निकिता, बात करें फिल्म अर्जुन रेड्डी की जो 2017 में आई थी, उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ स्टार ही नहीं बल्कि यूथ आइकन बना दिया। उनका रिबेलियस स्टाइल हो, डायलॉग डिलीवरी हो, या फिर इमोशनल एक्टिंग, लोगों को ये सब बहुत पसंद आया।
1: और साहिल, विजय सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और एंटरप्रेनर भी है। उन्होंने अपना फैशन ब्रांड भी लॉन्च किया जिसका नाम है राउडी वियर। उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए।
0: विजय ने महानती 2018, गीता गोविंदम और टैक्सी वाला, ये भी 2018 की फिल्में हैं, और डियर कॉमरेड, द फैमिली स्टार जैसी फिल्मों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
1: और दोस्तों, अगर इनके मेजर अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में मिला, अर्जुन रेड्डी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, साथ ही साथ नंदी अवार्ड फिल्म येवड़े सुब्रमण्यम के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी मिला।
0: उनकी फिल्म मैली चुपुलू 2016 को 2 राष्ट्रीय फिल्म 4 अवार्ड्स मिले थे, जिसने उन्हें शुरुआती करियर को एक उड़ान दी। और सबसे खास बात यह है कि विजय जो है फैंस से दिल के कनेक्टेड रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनका फनी और एनर्जेटिक अंदाज फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आइए सुनते हैं उनकी एक फेमस फिल्म का हिंदी रीमेक।

0: साथियों, कार्यक्रम में हम बात करते हैं दौड़ की रफ्तार की, जिमनास्टिक की खूबसूरती और पानी में बिजली जैसी स्पीड की।
1: केन्या की उस लड़की की जिसने गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन जीत ली। जी हाँ, नाम है टेकला लोरुपे।
0: साथियों, उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन शायद यही सफर जो था आगे चलकर उन्हें दुनिया की सबसे तेज धाविकाओं में से एक बना गया।
1: जी हाँ, टेकला लोरुपे ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने न्यूयॉर्क मैराथन जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। वे अफ्रीका की पहली महिला बनी जिन्होंने यह बड़ा खिताब अपने नाम किया।
0: लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ मेडल्स तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपने देश में शांति जो है और शिक्षा के लिए भी काम किया है। उन्होंने पीस फाउंडेशन की शुरुआत की ताकि गरीब बच्चों के लिए बेहतर ज़िंदगी और खेलों में मौका मिल सके।
1: और उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हो, अगर हौसले मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है।
0: साथ ही इसी के साथ बात करते हैं कि ऐसी खिलाड़ी की जिनकी परफॉर्मेंस देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। नाम है डेनियला सिल्वा।
1: रोमानिया की इस जिमनास्ट ने बहुत छोटी उम्र में दुनिया भर में पहचान बना ली थी। साल 1988 के सियोल ओलंपिक में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग आज भी याद करते हैं।
0: दोस्तों, डेनियला ने उस ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल जीते थे, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज। सोचिए, एक ही ओलंपिक में इतना बड़ा रिकॉर्ड। उनकी बैलेंस, उनकी स्पीड और हर मूव में जो गजब की परफॉर्मेंस दिखाई देती थी।
1: जिमनास्टिक एक ऐसा खेल है जहाँ एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है, लेकिन डेनियला ने हर बार खुद को साबित किया।
0: उनकी मेहनत ये बताती है कि सफलता से टैलेंट से नहीं, बल्कि उसके कई पीछे जो सालों की छुपी मेहनत और अनुशासन है वो भी छिपा होता है।
1: जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से निकले एक ऐसे स्विमर जिन्होंने पानी में रिकॉर्ड्स की लहरें पैदा कर दी, ग्रांट हैकेट।
0: ग्रांट हैकेट दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्री स्टाइल स्विमर्स में से उनका नाम गिना जाता है। खासकर 1500 मीटर फ्री स्टाइल में उनका लंबे समय तक कोई मुकाबला नहीं था।
1: जी हाँ, उन्होंने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया।
0: लेकिन साथियों, उनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं रही। खेल के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।
1: और इससे हमें यही सीख मिलती है कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल समय में भी खुद को संभाले रखे। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में

0: साथियों, तो आपको लिए चलते हैं अब रोज़गार समाचार की ओर और बात करते हैं रोज़गार समाचार में। तो सबसे पहले आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट की, तो वहाँ पे 3540 पद की जो है वो निकली हुई है वैकेंसी, और एज की है बात करें तो 21 से 40 वर्ष के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री के साथ साथ एनईटी, एसएलईटी, एसईटी पास या फिर पीएचडी। लास्ट डेट है 3 जून। अब बात करें आरआरपी एएलपी की, तो 11,000 के आसपास कुछ पद इसमें निकले हुए हैं। 18 से 30 वर्ष की आप आयु में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या इंजीनियरिंग में। लास्ट डेट इसकी 14 जून है। और कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 660 पद निकले हुए हैं। 18 से 30 वर्ष इसकी आवेदन आयु है और लास्ट डेट 11 जून है। इसकी स्टार्टिंग डेट 12 मई है। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग और कांस्टेबल, सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती निकली हुई है 9175 पद, यानी कि लगभग 9,000 पद के आसपास। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10वीं पास और लास्ट डेट है इसकी 19 मई।
1: और इसी के साथ दोस्तों अब ले चलते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की ओर। स्पोर्ट्स अपडेट में बात करते हैं आईपीएल 2026 के मुकाबलों की। आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटन के बीच होने वाला है। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और कल के मैच अपडेट्स की बात करें तो कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से करारी मात दी। और इस मैच में फिन एलन ने शानदार नाबाद शतक जड़ कर केकेआर को जीत दिलाई।
0: साथियों, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। फिर से मिलने के वादे के साथ मैं था आपके साथ साहिल और मेरे साथ थी
1: निकिता।
0: नमस्कार।

0: हमारे युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी उदयपुर से हो रहा था। शाम के 6 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से, सुनिए हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात

0: रात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कविता कृष्णमूर्ति के गाए गाने के साथ। फिल्म है खामोशी।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

ना अभी आपने सुना उदित नारायण, सुनीता राव और साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम का आखिरी गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म है चलते चलते।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा,
1: हम भी वही हैं आपके साथ हमेशा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश

0: देशभर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्यस्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा, निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक MOU भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

0: आया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में

0: प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत SI भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट

0: भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में आए घनखट होना तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू आज देश भर माए साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माए राजीनामा लायक मामला ने सुनवाई करी जावे है। वह कहो कि इन अदालतां रो टेम बचबा सागे पक्षकारां ने तुरंत न्याय मिले है।
2: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
1: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी जा।
3: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया। मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावण है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक

0: ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਤਰੀ ਕਾਰਿਆਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਛੇ ਖਬਰ ਨਵੀਂ ਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾ ਮੇਘਵਾਲ ਕਹਿਓ ਕਿ ਕਾਰਿਆਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਕਾਂ ਸਾਗੇ ਨੂਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵਿਗਤਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜੀ। ਅਰਵਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਾ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜੀਓ।
1: ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਇਆ, ਆਈਪੀਸੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ ਆਈ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਆਈ, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य विधि मंत्री जोगाराम पटेल लोक अभियोजकों की समस्याएं सुनी अरमारा निपटारा रबारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन से जुड़े मामला और नुआ आपराधिक कानून ने असरदार तरीकों लागू करने बारे में खास तकनीकी सत्र रखी गया। सुप्रीम कोर्ट का जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यों और न्याय अधीन काम लेवण माथे जोर दिनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया दो दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवण जरूरी है, पर तकनीक काम लेवण रे दौरान मानव मूल्यों ने नजरअंदाज नहीं करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं वेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी जा कार्यक्रम में राज्यपाल आर एन रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यानयोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पतालों में अब इलाज जुड़िया सगला नियमों री कड़ाई पालना तय करी जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकारां सागे मीटिंग कर इं बारा में हुक्म दीना। वह कहो कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरी खिठौना लापरवाही री सूरत में संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पताल में संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण माथे जोर दीनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन रे जरिए जापो वेवण पाछे नवी मायडा री मौत वेवण और तबियत बिगड़वारा मामला में राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दीना है। ईसा गई यूटीबी माथे लाग्योड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और दो डॉक्टरों ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजिकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकयारो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच में चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही री ठापण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है। इ वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजो। राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणारी अगुवाई माए ओ दल अस्पताल रो दौरो किन्नो इन पाछे वे अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो के ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरारी

0: खराब हालत रे बावजूद वठे ऑपरेशन करी जिया जिन कारण मरीजा में संक्रमण फैल गयो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज जवान श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो के महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला। ये मौके भरतपुर माए शौर्य यात्रा निकाली ची। ये पाछे राखी जी संगोष्ठी माए महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावा याद करी ची। पाली जिला रा जवाली माई रैली निकाली ची और खूनदान शिविर लगाई चियो। प्रदेश माए जनगणना 2027 री तैयारियां रा तेत कर्मचारियां ने सिखावन देवन रो दौर चाल रियो है। डूंगरपुर माए प्रगणका और सुपरवाइजरा रा तीजा बैच रो 3 दिन रो सिखावन कार्यक्रम आज पूरो भियो। सिखावन रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवन, लेआउट नक्शो बनावन और स्व गणना रा काम रे बारा माए विगतवार जानकारी दीरी जी। प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करन रो अभ्यास ही कराई चियो। ये दफा डिजिटल जनगणना 2 दौर माए करी जा रही है। राज्य माए इरा पहला दौर माए 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जबकि मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माए करी जावेला। अरबे मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माए लू बाज रही है जबकि लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माए ऊंचो ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है वठे दिन सागे रात्रि भगती पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चार रियो है। बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
0: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावण रा जतन करण रा हुक्म दिना है। वे आज जयपुर माए शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खास तौर महिलावां और बच्चों के खिलाफ होवण वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजातियों जुड़िया मामला माए तुरंत जांच कर और असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओरों आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागर पूरी फेगी। राज्य रा 38 जिला माए फी परीक्षा माए 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड़ रहा तेत आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस पीछे मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए अब थोड़ी देर पछे 7:30 शुरू फैला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश माए आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद माए मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुक्म दीना। और प्रदेश में घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। हमारे ग्रामीण परिवार अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम रामा भाई, राम राम।
1: राम राम रेखा भाई साहब, राम राम।
0: और
1: खेती और गरुण वाला संगला किसान भाई ने भी अपना राम राम सा।
0: राम राम सा, देखो सा कार्यक्रम में आया। हाँ, और हगला किसान भाई बेनारे वास्ते चौपाली बात में आज आप ही बात लाया हाँ कि जो फसल अवशेष रो प्रबंधन वे वो आप किस तरह कर सका।
1: बिल्कुल सा, फसल अवशेष प्रबंधन रो मतलब यो है कि अपने जो कटाई रे बाद खेती में जो वज्जा हुए जिस तरह पराली है, तना है, पत्तियादी है, वणा ने जलावा रे बजाय वणा रो पुनर्चक्रण करने उन्हें पाचो उपयोग में लेनो, यो फसल अवशेष प्रबंधन के मामले सा।
0: बिल्कुल सा, देखो सा यो जो मृदा स्वास्थ्य है, पर्यावरण है और वंडी उत्पादकता रे वास्ते गणो आवश्यक है। और प्रमुख विद्या में अगर आप ही बात करा तो हैप्पी सीडर, रोटावेटर, मल्चर उपयोग और बायोडिंग पोजर अब घटक द्वारा भी आप ही अन्य खाद बनाई सका सा।
1: बिल्कुल सा, फसल अवशेष प्रबंधन की मुख्य विद्या है जिस तरह कृषि मशीनरी उपयोग, हैप्पी सीडर या सीधा अपने फसल री बुआई करें और पराली री जो है हमने खेत रहे महीने मल छायर रूप में फैले दे हैं जनियों का ये है कि नमी बनी रहे सा।
0: देखो सा बात करा आप ही रोटावेटर ही जनी में फसल अवशेष ने काटने मिट्टी में अच्छी तरह मिलाई देवे। स्ट्रा बेलर ही बात करा तो या खेत में बिखरिया थका पुआल ने इकट्ठो करने वंडी गाठा बनाई देवे जनी की बाद में चारा रे रूप में या उद्योग रे रूप में भी आप बेच सका।
1: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो जैविक विधि भी है जिन्हें आप बायो डिकम्पोजर भी कह सका। फसल ने वेस्ट डिकम्पोजर ने पूसा बायो डिकम्पोजर छिड़काव करने वजह अवशेष है वह 20-25 दिन पर महीने खाद में बदल जावे सा।
0: देखो सा बात करा आप ही मल्चिंग री तो अणी में अवशेष ने मिट्टी री सतह पे छोड़नो वेवे जनियों की मृदा रो तापमान नियंत्रित रेवे और नमी भी अणी में वणी तकी रेवे।
1: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो मिट्टी री उर्वरता में भी कमियां हुए जिस तरह पोषक तत्व जो है जिस तरह नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, ये सब अपने नष्ट भी हो जाए उनमें सा।
0: बिल्कुल सा, और पर्यावरण प्रदूषण भी अपनी जटे बात करा तो अत्यधिक धुओं और ग्रीन हाउस गैसा जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड निकलो जो ग्लोबल वार्मिंग और स्मॉगरी समस्या वे वह भी वही सके सा।
1: अन्य अलावा देखो मिट्टी के ऊपर परत में जो मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव है वे भी जल जावे सानी में।
0: देखो सा आप ही अणी पे और बात करूंगा लेकिन आपको तो सगला किसान भाई बहना ने एक राजस्थानी गीत होने ही था सा।
1: हाँ सर।

0: प्रतिशत तक जो अनुदान वेवे वो भी प्रदान करे
1: बिल्कुल
0: सन।
1: सा। अन्य अलावा देखो, मशीनरी के जरिए अवशेष आने खेत में ही मिट्टी में मिले ने खाद बढ़ावना वास्ते भी प्रेरित करना आना एक उद्देश्य है सा।
0: बिल्कुल सा। अगर आप ही अंडे साथ में बात करा कि भाई अंडे पात्रता और आवेदन आप ही किस तरह कर सका, तो यह जो योजना है मुख्य रूप आपने अपने क्षेत्र में चले जटे पराली जलावरी समस्या अधिक व्यवसाय किसान अपनी फसलों अटे ब्योरो देने वणी पे कृषि विभाग री जो वेबसाइट वेवे वटे जईने आप आवेदन कर सका सा।
1: बिल्कुल सा। अन्य फायदो ये होगा कि मिट्टी की उर्वरकता वणी थकी रहेगा, पराली ने खेत में सड़ावा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जिस तरह फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, वनारी मात्रा बढ़ जाए। अंडे अलावा लागत भी कम है, या यूरिया और अन्य जो खाद है मंडी खपत ने कम करने किसान भाई लागत भी बचाएगा सा।
0: बिल्कुल सा। और स्वास्थ्य री अगर आप जटे बात करा तो अणियो अगर पराली कम जलाऊंगा तो अणियो हवा री गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, सांस संबंधी बीमारियां भी कम वेगा और अंडे साथ साथ में किसाना ने भी खूब सारा लाभ मिलेगा सा।
1: बिल्कुल सा। अंडे अलावा देखो, किसान भाई ने अगर मशीनरी की जरूरत पड़े तो ये मशीनरी बैंक को किराए पे भी मिल सके, तो वो भी बनाने लाभ भी इसके साथ।
0: बिल्कुल सा। देखो सा, या तो आप ही बात की दी कि भाई फसल रो अपने अवशेष अगर सही तरीकों करांगा तो आप ही कह सका कि आप ही अणा अवशेष रो भी अच्छी तरीकों लाभ ले सकांगा सा। और देखो सा, अभी आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और एक राजस्थानी गीत और सगला किसान भाई बहना ने हुनावा सा और लारे लारे संदेश भी।
1: हाँ सा।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो देखो रामा भाई, यो तो हुनियो मन भावन राजस्थानी गीत और लाल लारे संदेशा भी हुनिया सा। और अब आपने किसान भाई बिना रे वास्ते यो कार्यक्रम है, तो अगला किसान भाई बिन वाट भी ना रे की भाई मौसम री जानकारी भी आप पाते वा सा, तो क्यों नहीं बतावा कि आज रो मौसम कसो रहेगा सा।
3: हाँ सा।
2: तो देखो सा, आज है 9 मई 2026 रो दिन है और उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में मौसम काफ़ी गर्म रेवा रे वास्ते यो जो आज रो मौसम है वणी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत गर्मी महसूस हो रही है और न्यूनतम तापमान की बात करा तो अभी 47 डिग्री सेल्सियस तक रह सके सा।
3: बिल्कुल सा। अभी किसान भाइयों ने सामान्य जानकारी भी दे रहा हूँ कि किसान भाइयों ने सलाह दी जावे कि वे जो अपने मिट्टी परीक्षण के लिए 30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी का नमूना इकट्ठा करने प्रमाणित एजेंसी रे बटे मिट्टी री परीक्षण जरूर कराना है सा।
2: बिल्कुल सा। और देखो सा, अगर बात करा आप ही गेहूं री तो अनाज ने भंडारण में रखो पहला अपने भंडार करी अच्छी तरह सफाई कर लेनी है, अनाज ने अच्छी तरह सुखाई लेनो है, कूड़ा कचरा और जल या पचे विने नष्ट करने कर देनो है, दाणा में नमी अगर 12% ज़्यादा नहीं वेनी चाहे अणी बात रो भी अपने ध्यान रखनो है। भंडारण री छत दीवार फर्श पे एक भाग अगर मेला थियान 50 ईसी ने अभी 100 भाग पानी में मिले ने छिड़काव कर देनो है। यदि पुरानी बोरिया अभी प्रयोग में कर रहे हाँ ले रहा हाँ तो वनडे वास्ते आपने 1 भाग मेला थियान और 100 ग्राम पानी में गोल में आपने पछे मिले ही ने और 10 मिनट तक भिगोई ने आपने छाया में सुखाई देनी है सा।
3: बिल्कुल सा। बात कर रहा मूंगरी तो ग्रीष्मकालीन मूंगरी फसल में फूल आवारी अवस्था में सिंचाई कर देनी चाहे। और बात करें कपासी तो अड़ी सप्ताह में किसान भाई ने कपासी बुवाई के लिए खेत तैयार कर लेना चाहे। गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज और अपने जो विश्वसनीय स्रोतों अपने खरीदना है सा।
2: बिल्कुल सा। देखो सा, अंडे साथ में आप ही बात करा कि जो बेल वाली सब्जियां वे जो कि कुष्मांड कुलरी सब्जियां में जो लाल रंग कीट और अंकुरित और नई पत्तियां में खाई ने जो फसल ने हानि पहुँचावे वंडी रोकथाम रे वास्ते भी आपने कार्बेलियल 3% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरों सुबह या हांजेरी टाइम आपने बुरका करनो है सा।
3: बिल्कुल सा। बात करा मूंगफली री तो खरपतवार रे प्रकोप ने नियंत्रित करवा रे लिए उचित पेगिंग रे लिए इंटरकल्चरल ऑपरेशन और हाथों गुड़ाई री आवश्यकता वह तो अपन यह कर देनी चाहे सा।
2: बिल्कुल सा। भिंडी री बात करा तो भिंडी में यदि फल रो आकार 5 इंच लंबो वे तो आपने तुड़ाई कर लेनी है। तुड़ाई रे बाद में भिंडी री फसल ने आपने 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरों यूरिया डालना है सा।
3: बिल्कुल सा। और गर्मियों में महीना में देखो हरा चारा की कमी तो वैसे भी है, अड़ी वास्ते अपने हरा चारा लिए जो फसल है जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, अनारी बुवाई कर देनी चाहिए।
2: बिल्कुल सा। और गाय या पशु डांडा की बात करा आप ही तो जानवर में भी एंटीबॉडी बढ़ावे वास्ते वना ने विटामिन ई और सेलेनियम सप्लीमेंट जरूर देना है।
3: बिल्कुल सा।
2: साथ में देखो सा, गर्मी घनी पड़ रही है तो अपना पशु वारे ध्यान रखवारो काम भी आपने करना है। तो वना रे उचित ठंडा पानी री व्यवस्था करनी है, वी जटे भी बंध्या तक कर रहे है, जने भी शेड में रह रहा है वटे उचित हवादार खिड़कियाँ रखनी है, साथ साथ में वनाए जगारी भी बराबर टाइम टाइम पे सफाई करता रहना है ताकि आपनो पशु अगर स्वस्थ रहेगा तो आप ही कह सका कि वी दूध उत्पादन भी हो देगा सा।
3: बिल्कुल सा। तो यह तो बढ़िया जानकारी दी थी और अबे होना एक और बढ़िया सो लोक संगीत सा।

0: ड्रामा पे ही हो तो हुने हो मन भावन राजस्थानी गीत और अबे आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और बात करा आप स्वच्छ भारत मिशन कही है सा।
1: बिल्कुल सा स्वच्छ भारत मिशन एक ये भारत सरकार की राष्ट्रीय अभियान है जनरो उद्देश्य है कि गांव और शहर ने साफ स्वस्थ और खुला में शौच मुक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है सर।
0: बिल्कुल सा अंडी शुरुआत री आप ही बात करा तो 2 अक्टूबर 2014 में अंडी शुरुआत हुई और अगर अभी 2026 यानी अबारे वास्ते बात करा तो यो फोकस सिर्फ शौचालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जीवन शैली पर भी निर्धारित है सर।
1: 2026 में मिशन का कुछ लक्ष्य अन्य प्रकार है कि देखो हर घर में स्वच्छ शौचालय बनना चाहे गीला और सूखा कचरा ने अलग अलग करवार वास्ते अलग अलग बनना चाहे प्लास्टिक कचरा ने कम करना है और गाँव और शहरा में साफ सड़क और नालियाँ बीनी चाहे सा।
0: देखो सा अंडे लारे स्वच्छ पेयजल साफ वातावरण और लोगा में भी स्वच्छता की आदत ने विकसित करनो आने में शामिल है सा।
1: बिल्कुल सा ग्रामीण क्षेत्र में भी विशेष कार्य और गांव में जो सामुदायिक शौचालय हैं बनारो निर्माण भी हैं अंडे अलावा कचराओं जो खाद बनाना है वंडी व्यवस्था भी है सा नालियाँ और तालाब की सफाइयाँ हैं और स्कूलों ने भी स्वच्छ शिक्षा और महिला और बच्चा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान आनी मिशनरी मुख्य उद्देश्य सा।
0: देखो सा अब आज जो शहरा में भी अभियान चल रहे है कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण करना है स्मार्ट डस्टबिन और सफाई मशीन अंतर्गत आवे प्लास्टिक मुक्त बाजार बनाना है सार्वजनिक स्थान पे भी नियमित रूप सफाई करानी है सा।
1: बिल्कुल छा अंडे अलावा देखो स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम शहरा की रैंकिंग भी है ऐसा आजकल किसान और ग्रामीण परिवार के लिए जो लाभ है वहीं में साफ वातावरण कही है कि बीमारियाँ भी कम है गंदा पानी और कचरा हुआ वाला जो संक्रमण है वे भी घटे सा और अंडे अलावा देखो जैविक खाद बनावा खेती में भी लाभ है सा।
0: देखो सा वंडे साथ में स्वच्छ गांव में पर्यटन और रोजगारी संभावना भी बढ़े सा और महिला रे वास्ते भी अगर शौचालय वेवे तो वनार में भी सुरक्षा और सम्मान री भावना बढ़े सा महिला ने भी रात में बाहर आवर जावर में परेशानी नहीं वेवे बच्चियारी भी अगर आप ही बात करा तो वे भी सुरक्षा रो अनुभव करे तो अणी प्रकार अगर आप ही बात करा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है

0: बनी में अगर आप ही काम करांगा और साथ साथ में देखो लारे प्लास्टिक रो उपयोग कम करांगा, आसपास अपने सफाई रखवारी आदत अगर आप ही डालांगा, दूसरा ने भी जागरूक करांगा, आप ही स्वयं भी जागरूक होंगे, तो आप ही कह सका कि अणि मिशन रो जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो 2026 में तो नई तकनीक का उपयोग भी वही है आजकल स्वच्छ भारत मिशन में, कि कचरों बिजली और गैस बढ़ाना है, मोबाइल ऐपों सफाई शिकायत दर्ज करानी है, मशीना और नालियों सरकारी सफाई करवानी है, अंडे अलावा डिजिटल निगरानियों भी सफाई व्यवस्था मजबूत करनी है सा।
0: देखो सा ये सब आप ही बात कर रहे हैं, भाई स्वच्छ रखनो है, सफाई रखनी है, लेकिन कुछ अणी में जो आम नागरिक है वनारा भी कुछ काम है जो वी कर सके सा। तो अकी आपा स्वच्छता बने रखा तो सब पहलो काम तो यू ही करनो है कि सड़क पे आपने कचरो नहीं फैलानो है
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सा।
0: घर में भी आपने जो बेना है दो डस्टबिन रखे, दो कचरा पात्र रखे, वनी में एक में गीलो कचरो और एक में सूखो कचरो डाले सा। साथ में पानी री बर्बादी भी आपने रोकनी है। प्लास्टिक बैग री जगह अगर आप ही कपड़ा रो थैलो उपयोग में लांगा तो भी आप ही पर्यावरण ने स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दांगा सा।
1: बिल्कुल सा। सामुदायिक सफाई अभियान में भी आपने भाग लेना है। स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, यह हर नागरिक की कर्तव्य है सा। स्वच्छ गांव, स्वच्छ स्वस्थ परिवार और मजबूत भारत, यही स्वच्छ भारत मिशन 2026 रो सपनों है सा।
0: बस आपने तो यू ही कहना है कि हर हाथ जो है वो सफाई के वास्ते आगे बढ़े, जदी जापी कह सका कि अपने भारत में जो वास्तव में स्वच्छ और सुंदर बनेगा सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो आपने तो यू ही कहना है कि अणि कार्यक्रम ने माध्यम जो भी आपने कार्यक्रम ने हुन रहा है तो स्वच्छ राखवारी जो पहल है वो आपने स्वयं चालू करनी है सा।
1: बिल्कुल सा।
0: और आपने अड़े भरा भी जतरा भी लोग हैं वड़ा सबने भी अंडे प्रति जागरूक करना है सा।
1: बिल्कुल सा। या तो देखो बढ़िया जानकारी दी थी, और अब होना सा एक बढ़िया सा राजस्थानी लोक संगीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: કામા ભાઈ યો તો હું મન ભાવન રાજસ્થાની ગીત ઓર અભે આપણે કાર્યક્રમને ઓર આગે બઢાવવા ઓર વાત કરા કે જો અબાર ચાલી રહો ગરમી રો મોસમ ઓર અણી મેં આપણે બચાવ ઓર આપણે કશું ખાનપાન રાખા તાકિ આપણું શરીર સ્વસ્થ રહે સા
4: બિલકુલ સા દેખો સા ગરમી રો મોસમ આતે હી સબ હમ બડી ચુનૌતી શરૂ હોઈ જાવે સ્વાસ્થ્યને સુરક્ષિત રાખવા કે લીએ ઓર જબ વાત આવે કિસાન ભાઈયારી तो यह चुनौती और भी बढ़ जाए सा, क्योंकि किसान भाई ने जो अधिकांश टाइम है वो खुला आसमान के जरिए नीचे तेज धूप और गर्म हवा के बीच में गुजरे ऐसा।
3: बिल्कुल सा, देखो किसान भाई बिना ने भी आपे कहवा कि भाई जब गर्मी में खेत में अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आप ही रखांगा तो आप ही मांदा नहीं पड़ांगा सा। सब पहले तो आपने ध्यान यो रखना है कि पानी की कमी अपने शरीर में नहीं वेनी जावे। अगर पानी की कमी वे जावे तो अपने शरीर में जो जरूरी लवण वेवे वी भी कम वेवा लाग जावे। अगर अंडी पूर्ति अगर नहीं करा तो अपने कमजोरी, चक्कर, सिर दर्द और थकान भी वे सके सा।
4: हाँ सा, अनिवार्य से देखो खेत में काम करते समय अपने पास में पानी की बोतल जरूर पास में रखनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहना चाहिए।
3: देखो साहब, अपने साथ में ध्यान यो भी रखना है कि बहुत देर तक आपने प्यास ने रोकने नहीं रखना है और जो भी काम आप खेती बाड़ी संबंधित कर रहे हैं बच्चे आपने आधा घंटा रे दौरान आपने थोड़ा थोड़ा विश्राम जरूर लेना है सा।
4: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो मिट्टी का गड़ा जो है पानी के लिए सब बढ़िया माना जावे और यो शरीर और प्राकृतिक ठंडक भी दे सा।
3: देखो सर, अंडे साथ में आप ही बात करना तो ज्यादा ठंडा और गर्म जो बर्फ वालो पानी वे बंडो प्रयोग आपने नहीं करनो ऐसा। ध्यान आपने यो भी रखनो है कि दिन की जो धूप है 12 बजे लगाई ने और 3 बजे तक जो कि सब तेज धूप है वे तो अणी में आपने बचवारी कोशिश करनी है और आपने खेती बाड़ी संबंधित भी कोई बहुत जरूरी काम नहीं जतरे नहीं करना है सर।
4: बिल्कुल सर, શરીર ને ઉર્જા રે લીએ ઠંડક ની જરૂરત હે અની વાસ્તે આપણે દેખો અની ટાઈમ મે છાછ હે નિંબુ પાણી હે બેલ રો શરબત હે આમ પન્ના હે સત્તુ જેસા યે જો પે હે વે આપણે ઉપયોગ મે લાના છાવે સા।
3: દેખો સા, વંડે સાથ મે અગર આપી ગરમી હરે મોસમ હે તો કપડા ભી જો ચુનાવ કરા યા આપી જો પહેરા હા વી આપણે શરીર પે હલકા રંગરા સૂતી કપડા આપણે શરીરને આરામ દેવે તો ભી વસા કરનો ચાવે। અગર આપી ખેતીવાડી રો કામ કર્યા હા તો સિર પે ભી ગમછો યા ટોપી જરૂર પહેરની ચાવે ઓર ધૂપ મે નીકળતા ટાઈમ ચહેરા ઓર સિરને ઢાંકને રાખણો ભી ફાયદેમંદ વેસા।
4: બિલકુલ સા, अंडे अलावा देखो ठंडा पानी में अगर ज़्यादा अपने परेशानी हुए तो ठंडा पानी की पट्टी रखनी चाहिए। अंडे अलावा
3: देखो सा, अंडे साथ में अगर आप ही बात करा तो देखो अणी मौसम में अगर जो लू है वह भी चल रही है तो आपने ध्यान यो ही रखना है कि अणी मौसम में लू रूम बचवारे वास्ते भी आपने उपाय करना है। उपाय यो ही करना है कि जो आपने शरीर और तापमान है विने ठंडो रखना जरूरी है और खान पान में भी कुछ ऐसा बदलाव।

0: करने आपी लू वसका सा। तो गर्मी रे आड़ा मौसम में आपी प्यास लागवा पे दिन भर में 10 लेने 12 ग्लास 13 ग्लास भी पानी आपी पी सका सा।
1: बिल्कुल सर,
0: और शरीर में अगर आवश्यकता और अधिक है तो भी आपी पानी रो सेवन कर सका सा। बंडे साथ में आपने ध्यान यो रखनो है कि पानी रे साथ साथ में आपने बराबर जो शीतल पेय है बंडो प्रयोग भी टेम टेम पे करता रहनो है। भले गन्ना रो रस है या और भी कोई पेय पदार्थ है भी है, छाछ है, लस्सी है, अनेक प्रकार पेय पदार्थ अगर आपी टेम टेम पे लांगा तो आप ही कह सका कि आपने शरीर में लू नहीं लगेगा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो या तो बढ़िया जानकारी दी थी और अभी होना सा एक और बढ़िया राजस्थानी लोक संगीत।
0: हाँ सा।

ग्रामीण परिवार अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। और इस फिल्म संगीत के सेगमेंट में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ रात के गाने। शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह के गाए बर्फी फिल्म के इस गाने के साथ।

जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना मोहित चौहान और अलीसा मंदोसा की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म है डियर जिंदगी।

जुबिन नौटियाल असीस कौर को अभी आपने शेरशाह फिल्म का में सुना। लीजिए अब सुनते हैं रेखा भारद्वाज, सुरेश वाडकर और सुनिधि चौहान को, फिल्म है कमीने।

0: Love!
1: ये गाना है फिल्म स्त्री 2 से। अमिताभ भट्टाचार्य, सचिन जिगर और मधुबंती बैग ने इस गाने को गाया।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या, उसके बाद रात 9 बजे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुटे।

0: गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय

0: वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री

0: मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमरीका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमरीका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen, and several other leaders of the BJP attended the session.

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज आपने सोनू निगम को सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।

संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों न हो। शांतता को

चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करी, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करते थे, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा?

0: बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहां भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे जो सुगम संगीत गा रहे थे, उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उस फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था, फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ न कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली

0: मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
0: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है, जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को, जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छांव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प

0: लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
3: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
3: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
4: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
5: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इसके बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ, बाकी 2 अपने ऑफलाइन स्टोर है। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
6: मेरा नाम साक्षी है और मैं भालुगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करती थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके

0: दिन रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भानुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया है उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
4: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
3: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
6: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है। एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
3: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये 3 शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
4: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
3: और मैं नेत्रा।
7: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
9: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
10: वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: दुकानदार का संतूर पर बजाया राग आब होगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state, Deepa Dutt.